नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुरु।

सवारनहारा। सूरत महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर कट अंतर है।

के। सतगुरु मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

सतगुरु सेवे ता सुपावे नावे ता जाएगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावे हर रस साध न आया संध्या तर्पण करे गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वडभागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सतगुरु।

हर का नाम सच्चा मन वसिया, नामे नाम समाए, बिन सतगुरु सब जग बौराना, मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम पुला ना रहाओ, त्रै गुण माया परम पुलाया, हों मैं बंधन कमाए, जमन मरण सिर ऊपर उभो, गर्भ जोन दुख पाए, त्रै गुण वरते सगल संसारा, हों मैं विच पत खोई, गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई।

हर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद आपे आप वरतदा प्यारा आपे आप अपाहो बनजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वणज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुर कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उज्जर पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़े लाहो आप कराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पत्तन पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेख है पाक साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे तह तेरी होए मेरे मन में हर दिन अवर न कोए सतगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिजक समाहदा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खेल

प्यारा आपे करे सो होए, आपे अलख न लखिया प्यारा आप लखावे सोए। आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर न कोए, सब कट आपे भोग वे प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए। नानक गुप्त वरतदा प्यारा गुरमुख प्रगट होए। सोरठ मैला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उठापे आपे वेख विकसदा प्यारा, पर चोज वेख है प्रभ आपे। आपे वंचन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे। जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापे। रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरह प्रभ आपे। आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे। आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे। आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे। आपे जोगी पुरुष है प्यारा, आपे ही तप तापे। आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभापे। आपे नाम जपाएंदा प्यारा, आपे ही जपदा पे। आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे। आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापे। सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया। आपे साहु आपे वणजारा, आपे वणज कराया। आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया। मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा। गुर पूरे मीठे

आपे गुण गावाइंदा प्यारा आपे शब्द समाहा आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम ओ माहा अंदिन अंद होवे वडपागी ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बन आपे गऊ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश वजाहा कुवलिया पीड़ आप मराएदा प्यारा कर बालक रूप पचाहा आप अखाड़ा पाएदा प्यारा कर वेखे आप चोजाहा कर बालक रूप उपाएदा प्यारा चंदूर कंस के समाराहा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूरख मुगदाहा।

सौंप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सों प्रीत अंतर मन बेदया हर दिन रह न जाई ज्यो मछली बिन नीर बिन सह क्यों नामे बिन मर जाई मेरे प्रभु कृपा जल देवो हर नाई हों अंतर नाम।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तं सीतर, ता श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वढाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

पथ सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके, जो लो पाओ अभाव इह माने, तो लो मिलन दुराई, आन अपना कर्त बिचारा, तो लो बीच बिखाई, माधवे ऐसी दिहो बुझाई, सेवो साध गहो ओट चरना, ने बिचरे मोत चसाई, रहाओ, रे मन मुग्द अचेत चंचल, चित तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आन तू रचिया, उर्जो संग बैराई, सोग न व्यापे, आप न थापे, साध संगत बुध पाए, साकत का बतना यूं जानो, जैसे पान चुराई, कोट पराद अछाद्यो इह मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन शरण आयो प्रभु, सब लेखा रखो उठाई, सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोक गृहवंता, माया संबंधे ही, अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या अपने ही, रे नर काहे पपोरो देही, उड़ जाए गो

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा ते प्यो वड पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया राखे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जिस करे दयाला ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोह व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरख को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू धारा कहु नानक गुर बिन नहीं करिए एह पूरन सत बिचारा। सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा किलबिक काटे निमक अरादया गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महाकृपत मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त पुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याय सोई करण कारण

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वत्सल दयाला संता की पैज रखदा आया आप बिरद प्रतिपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे।

ए मन तै को देखा, सुनमीता हूँ तेरी शरणाई आया, प्रभु मिलो देव उपदेशा। मान न की जय शरण परी जय, करे सुफला मनाय, सुनमीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय, क्यों दर्शन हर जियो पाई है। कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के, हर नामा है मीठा, जन नानक को गुर कृपा पारी, सब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, हर्ग जिया का दाता रे, प्रतपाले नित सार समाले, एक गुण नहीं मूरख जाता रे। हर आराज न जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परयो रामदास, रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व घटा भरपूरी रे, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूरख जानिया दूरी रे। हर व्यंत हों मित्र वर्णो, क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूरख देव उपदेशो रे। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर गर्वास न तरिया रे। सोरठ महला पंजवा, जिना बात को बहुत संदेशरो, ते मिटे सब गया, सहज सैन अर सुखमन नारी, ऊद कमल दिखसया।

प्रयान भया करे बेनती राज ठाकुर से हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलया जह प्राप्त तेह लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना सेजन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोगन में लोभी लोभायो क्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे तेक निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम स्यों अमली लग पायो कूमन कूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साव लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

अपने जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों व्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा महा आनंद पाए सुख पाया संतन कह प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी

तो अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रे न तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर बिद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु करेत मुगद कह स्रोते हर नामा

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बाछत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वसया, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सभा से आये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन

परमा देरा सज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अधाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जब तक समझम ज्ञान पत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया पापी पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगले पापी जम की पाता पहु नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पे बिगाता सूरठ मैला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी।

साची दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो।

मनव से आदनासी, ताको विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसेरिद अंतर अमृत हर रस्ता के।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हों मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न खाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरत महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी, जप अनद करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाय रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुखमासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंश मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी तारी, संतो यहाँ बताओ कारी, जित हो में गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर्मान्या, होवा सगल रे नारी।

रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जा के सिमरन होए आनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर नौ त्रिसुम।

रहाओ। सांत पावे होवे मन शीतल, अजन नाम कर दुखी, गुरु नानक को प्रभु दिखाया, जल थल से पवन रुखी। सूरत मैला पंजवा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनके आप छुड़ाओ, ए पीतर के इनको डारो, आपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाओ, हर जन मंगल गाओ, रहाओ, विसर नाही कबहु हिए ते, ए विद मन में पावो, गुर पूरा पे क्यों वड़ पागी, जन नानक पते न पावो।

जगत जीवन कैसे पावे। सोरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई, गुण निदान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पै सुख पाई है बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संत प्राप्त, तिन पेटत दुर्मत खोई,

फेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण।

दून चौनी दे वड्याई सोभा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलख बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

वखाना कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

संपत रास राख ले हो पाई मेरे को तब आगे अरदास रहाओ जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खत्म।

सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिर

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नाना रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराछत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याये हम दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी

को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी तितलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी, बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम।

हम सवारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम आपे दिया प्रभु करण हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एह पूरन विमल विचारा कर कृपा।

आया हर संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाये बहुर न जोनी पाये जिस देवे पुरख विदाता।

प्रो सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो।

उपाय सुवाई, लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांची, बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने ता किसते आख सुनाये, कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये, होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती, सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा, दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले सांठे जग जीवन ना

कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई। तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी। सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बंत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, ते पुन पदार्थ तेरा, जन नानक ए

हर के नाम की वडियाई, आप पहर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत।

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साथ पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न बिरती जाती,

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया संतो किस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम ते

जो शुद्ध भाव है मोहे से आणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभु आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श।

सदा सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी पग

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती, सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कार आए, अपना गुरु ते आए

हर आराध सबो किच पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी

रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संभाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ शरणाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रम

धारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई फल पावे बेटी आस न जाए रहाओ कृपा करे जिस प्राण पत दाता कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पत

कहो नानक सर्व थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा। गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुरपूरे ए गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नजरी आया। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई।

नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाये जित सिमरन दर गए मुख उजल सदा सदा सुख पाये रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे।

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वडियाई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब के भाने बोले साहिब के भाने दास बाणी ब्रह्म वखाने नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय ध्याए कर सही सलामत आए संतोख पया संसारे गुरपूरे ले तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपूरे।

जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरणाई, मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कथू नाही। साचे साहिब से मन मानिया, हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें।

मेरे कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ शरणाए, जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा। सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए, दर्शन पेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाये। हर रस पीवो भाई, नाम जपो नामो आरादो, गुर पूरे की शरणाई रहाओ। तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूरन भाई, नानक की बेनंती प्रभ जी, नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा। करन करावन हर अंतर जामी, जन अपने की राखे, जय जयकार होत जग पीतर, सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई, तू समरथ शरण का दाता, आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा, तिसे अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन कर आए सो

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे, पहर सिर पाओ।

परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी रहाओ। मुक्त पंस जान्यो तैना हिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया। ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गन काशी उदरी ताको जसपुर धारो रहाओ। अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरह पारा। सोरठ महला नामा प्राणी कौन उपाव करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करी कौन नाम गुरु जाके सिमरे पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निद जाहे जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा माई मैं केविद लखों गुसाई महा मोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई। साध संग कबहू नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के विद्रो को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन निमख नाहिए बसावे पर तन पर दार।

जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी सोरठ मेला नावा। रे नर ए साची जी धार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजमू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाक्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा। एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत सनबंदी सगरे तन स्यो लागे जब ही निर्तन देखियो नर को संग छाड़ सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जस्तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन में कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ मैला नावा। मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो कूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हर सोगते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

बैरागी शब्द मन वेदिया मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हृदय शब्द सदा पैर रचिया गुर की कार कमावे। एको चेत मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसे सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूझी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई पिखिया नाम रजे।

हवर न दूजा भाई। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वड्याई, अपर अपार अगम गोचर, कहने कीम न पाई। सुन समाद महापरमार्थ, तीन पवन पत नामं, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामं। कर्म सो कर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामं, मन मुख झूठ लह पैमानं, आपे ज्ञान अगामं। जिन चाखिया से ही साध जान, ज्यो गूंगे मिठियाई, अकथे का क्या कथिये पाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत न काई, ज्यो चलाए त्यों चाले पाई, होर क्या को करे चित्राई। एक परम पुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुकम चलावन हारा। सेवा करी जे किछ होवे, अपना जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले कृपा कीनी, अमृत नाम आधारा। गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया, गुण में ज्ञान त्यानं, नाम मन पावे कहे कहावे, तत्तो तत्व खानं। सबद गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानं, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानं। सोरठ महला पहला तितुकी, आसा मनसा बंदनी पाई, कर्म तरम बंदकारी, पाप पुन जग जाया पाई, बिन से नाम विसारी, एह माया जग मोहनी पाई, कर्म सबे वेकारी। सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजे पाई, सो आत्म तत विचारी रहाओ, शास्त्र वेद बके खड़ो पाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल न चूकी पाई, अंतर मैल विकारी। इन विद डूबी माकुरी भाई, ऊंडी सिर कह पारी, दुर्मत कणी विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम ना पाई पाई, बिन नाम में परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आमन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तत्थ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत, गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देव अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए, बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछू न जाए, गुर मिले पौ मन।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेव्या प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पा।

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे।

जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चितलाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चाड़ मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हौवारी हौवारणे पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमती पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे भाग मिलाए सदा सुख सुहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चितला

मन हठ कार कमावनी पाए बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चे बैराग अन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारिय पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख होवे ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिख्या नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछे पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपा

प्रम्पो होवे नाथ, मिल संत सवा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास। गुरु बचनी सुख उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला परपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासिए पाई।

करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ, जिस पर तीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहिब है पाई, हों तिसके बल जाओ, ओ निर्गुण यारे पालदा पाई, देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ, जिस गुर साचा पेटी है पाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई, सर्व कला भरपूर, सास गिरास ना विसरै पाई, पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा भरपूर, जिना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई, पौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई, की तोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई, पोजन नाम आधार, नानक ते शरणागति पाई, जे किलबिक काटनहार। सोरठ महला पंजवा। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तैं अपना नाम जपाया, बाहर काड बिख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया, जिसनो की तो कर्म आप प्यारे, तिस पूरा गुरु मिलाया, सो आरा दे सास सास प्यारे, राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक, तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे, अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे, अनक जोन दुख पाए, साचा साहिब विसरिया प्यारे, बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे, से लागे साचे नाए, तिना पिछे छुटिया प्यारे, जो साची शरणाए।

पुंचाए पुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना आवे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करें बहुते रिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियाण पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल ले प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे एह विद जेलख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दातारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडोत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

तै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सृष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरते उपावन हारिया हौं गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा हौं मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे सतगुर राख ली।

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान, जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान। कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान, गुरमुख मोए जीवंदे गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है, मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए, जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी। हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है, सत संगत साधु लग हर नाम समाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है, हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है, श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास, मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास, जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास, दुख लागा बहुत कणा पुत कलत ना सास कोई जास, लोका विच मुह काला होआ अंदर उबे सास, मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सदगुर का पाना अनदिन करे से सच रहे समाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार, मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार, नानक पूरब लिखिया कमावना कोय ना मेटन हार पौड़ी। तुल आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया, विच हो मैं लेखा मंगिए फिर आवे जाया, जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करत्या ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनों सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाग लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए मन की सार न जाननी हो मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड़ भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा हों मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नौ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कुसंब खिन मैं ले जावना चलदियां नाल ना चले सिर पाप ले जावना जां पकड़ चलाया काल ता खरा डरा।

फिर मिलन ना पाए नी जमे ते मर जाए सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से ही पुरख जिना

तयो हर पोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ति है पाये मोख द्वार। ए पोजन अलभ है।

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विन गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मन आए।

जा। हर गुण तोट न आवई कीमत कहन न जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पाठ कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर।

करकति सब जगत थाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुकई न संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोकाले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलहारी सतगुर तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार पंडित पूले दूजे लागे माया कहवा पार।

पाए, मन हथ सहजना बीजियो उखा के अगे खाए, नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले साहर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दे।

हरिए सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख

तन पाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन पाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन पाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन

हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना विसरे।

गुरु का शब्द सुन ना जागियो, अंतर ना उपजियो चाओ। शरीर जलो गुण बाहरा, जो गुरु कार ना कमाए। जगत जलंदा डिठ में हो में दूजे पाए। नानक गुरु शरणाई उबरे, सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो में गई सो बावंती नार, पीके पाने

प्यारी ओ कर कर सिरे कसुद मन जो तरकत नारी वद पागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेलो सतगुरु दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजे फिर दुख ना लग गया है जमन मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए नानक हूँ बलिहारी।

साक सुध साक लखनी नानक नारी विच कुनार पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम त्याई हर उच्चरा हर ला

हौ मैं खपै खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पय पुनीत हर की रचनाया।

तुद आपे सिस्ट सिरजिया आपे सुनगोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरुमुख दे प्रब हर पावे सोई गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सोदे राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिरनाई ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई

पाए। दर्भ संच संच राजे मुए, गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पर पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम नाम

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कह कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन रहनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन

एक बस अगोचर नहीं है, बस अगोचर पाई कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे।

पिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट

लीन पकरफा क्यों अर काट्यो राम कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तउ ना बिसरो पानी आपन बापे ना ही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत।

नहीं ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए रहाओ। वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीन ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए। जै देखा तेरिया समाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नजरी नानक नहीं कोए। श्री महला पहला। नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर्ष्यो चित लागे फिर काल न खाए रहाओ। सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार। तनाफरी मैला पहला। जियो तप्त है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्व।

लाखों संसार तुद पावे अद्धी परवान। नानक जाने जान सुजान तना फ्री मैला पहला। काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पड़े आना। दरगे करिए तीने लेख खोटा काम ना आवे वेख। नानक जे विच रूपा होए खरा खरा आखे सब कोई रहाओ। कादी कूड़ बोल मत खाए ब्राह्मण नावे जिया काए। जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद।

गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार है, आप तरे सगले कुलकार है। दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मलकोवे, पढ़या बूझे सो प्रवान, जिस सिर दरगे का निशान। तना श्री मेला पहला हर तीजा।

तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सदबल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साथी बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणे, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनात्री मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अच अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, दुर्मुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपै।

राम कुमारी शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए सात नाम बड़े आई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक सात रते प्रभ आप मिलाए तनासी मैला तीजा।

अपने पथ खोए, गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पथ उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सुनाई सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सब किस साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाने कोए सत साचा सत आप दृढ़ाए नानक आपे देखे आपे सच लाए त्रासरी में लाती जा नामे की कीमत मित कहीं न जाए।

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान।

अब ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आ गए राजनाश्री महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो सदा रहो रंग राता हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो करण कारण।

परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया। तनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कहे न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बै संतर पायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उर्धारी हर हर हर औषध जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। त्रैश्री मैला चौथा हर के संत जना हर जपियो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर के नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिग लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम कैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक की रहे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत मिस कह न सके।

नानक दासन दास करो सब हम हर कथा कथा की। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर वाणी, जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक तल, सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगे प्रभु स्वामी, हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरख प्रभु स्वामी, जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाती पूख पुखानी। जिनके वड्डे पाग वड ऊचे, तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभु स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनाश्री मेला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखरा।

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा कल जुगता कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साथ जना की। जिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरु पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नापति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ति आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुरु भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनासरी मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय से आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदी

रहा आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से अवर सब त्याग को है हर पानी त्रासी मैला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख।

पगखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे ओट पराध मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे पगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल च्यों हेत बढ़ायो।

संगे सतगुरु सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुन चरले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सद केला। सनातरी मैला पंजवा, कर कृपा दियो मोहि नामा, बंधन से छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए साध।

किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, मेल कियो मेरे राजन। बिनस्यो टीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल नहीं अल।

साथ सदा सुख मन में सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई तरह पत।

होते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्हीं तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंक कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तना श्री मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई वर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनाश्री मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जे हर हर नाम दृढ़ाया।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी, नाम लैच कोट अगमासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे, सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी, सिमरत पार कराना। शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई साथ साथ मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवियो सब मध्य जब कत पेखो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाए जाप ताप पगत खा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अधाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो स्वाद प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलाव है मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुर आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत न व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे सनातनी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले रात्रि मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक स्नाना पुन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जपत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखम न जाई लैन राव जाप ताप प्रमन बसबा कर उर्द ताप ले गैन ए विद न पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन सनातनी मैला पंजवा बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्थिर करे ने चल ए मनवा बौर न कठूतावे है तू ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत न लागे संत संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पंजवा हर हर लीने संत उबार हर के दास

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार, त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हा चितारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, दोस्त पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक।

फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल, शरण पर्यो पूरन परमेश्वर।

कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना कर कृपा जिस देश।

द्रौपदे एकोंकार सतगुरु प्रसाद। छोड़ जाए से करें प्राल, कामना आवे से जंजाल, संग ना चाले तिन क्यों हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा रहा, साथ धर्म नहीं पावे दीठा, झूठ तो क्यों रचियो मीठा, दात प्यारी विसरिया दा तारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे, हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताने, जो खुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान। नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनाश्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अतमस्कीनी, संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के पगत गोविंद, सुख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र, तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम। देकर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुण पास, प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवे संता दूर। तनाश्री मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे, डर डर पचे मन मुख विचारे, रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव, सफल मूरत जाकी निर्मल सेव, एक निरंजन जाकी रास, मिल साध संगत होवत परगास। जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए, जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे। जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगे मिले तिसे ही जाए, सेई पगत जे साचे भाने, जम काल से पय निकाने, साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार, कट कट अंतर सगल आधार, नानक जाचे संतरेणार। तनाश्री मैला पंजवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कहे संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी, सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण, तन गोपाल गुण साकी, चरण शरण नानक दास हर हर, संति ए विद जाती। तनाश्री मैला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ से पाए, कंठ लाए गुरु राखे, संसार सागर में

अनब सदा उलास रहाओ, चरण तरन पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो कह हजूर, दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में, मन सदा ते आई। ईत ऊत नहीं बीछड़े, सो संगी गनिय, दिनस जाए जो निमक में, सो अल्प सुख पनिय रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे, कट ऊन न होई, सास सास समालता मेरा प्रभु सोई। अचल अछेद अपार प्रभु, ऊंचा जाका रूप, जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देओ दयाल प्रभु, जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभु, रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा, जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज तुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाचन पाजन खाके, पर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल पू मंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे, नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ, मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो, जीवन देवा पारगम सेवा के उपदेश मोको गुरु दीना जियो, तिस त्यों ना लाये हीत जा को किस ना ही बीत, संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध, जा के संग तेरे बंधन छूटे, गौ पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण, अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा की जय। तना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ, चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिखिया विकार, देख सगल है फीके, एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमख जा प्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा कर सतवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह मां पौ जल तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे, चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा कर अठवा दो पदे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई जत सत मोहि रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न सा कह जा ले रहाओ, निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनाश्री मैला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई, संतन को अनज सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का रब रहा सर्व ठाई राव, ताको कोई न पहुंचन हारा, जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम से आई। तनाश्री मैला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भे, पोमवंत अभिमानी, राजा जाने सगल राज हमरा,

ठाकुर गाये आत्म रंग स्वरणी पावन नाम से आवन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वसे मेरे ही रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कह सुखे ही त्रासरी मैला पंजवा जतन करे मानुख डैकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर मुह कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उत पेख आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जा कै मस्तक करवा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरवा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुवर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे पाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनासरी मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध दिख जा रे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी मेला पंजवा छड़ाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिल्स ना कतहू जात सत गुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ते बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए वो तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हरनी।

मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ। सुनी बेनती था कुर मेरे खसमाना करे आप, नान के आनंद भय दुख पागे सदा सदा हर जाप। सनातरी मैला पंजवा चतुर्दशा की नो बले अपना सिर ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शन।

औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पड़े साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई सनातनी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राग्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ जय जय पेखो तय नारायण सगल कटा में पागा नाम उदक पीवत जन

राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विक्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुर्बान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुर जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाये प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरबचनी प्रभ सिंह लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तो

निंदक टिकन न पावन मूले, उड़ गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई न पहुँचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, हो गया तत्चार, करण हार रखवाला हुआ, जाता अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु तारो कृपा कर सारो पूजा कह कूप से पाड़ ले वो राहो। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साधु पूरे। प्रभु बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत रहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा। अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन चिन्ह में तारा रहाओ। कोई हो आकर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतर को जानो, के गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक को तन में किन्हों, गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा उस तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर शोक ते रहे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पत्यो उदर परो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तय काटन हारे, होमे मार मिले भगतारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सनासरी मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुतेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सालाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुद पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसे रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनवा ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख है दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी को प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जात।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, सात ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी सात साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को केवड आखी है, हम मूर्ख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ

आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई कुमसर अवर न कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो दो रहा चलाए हुक्म समाए जन्म हुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हार।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप देसा पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसर जियो। कदे ना विसारी अन दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक बुद्ध बिचरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर। सत संगत मिले वड पाग।

सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हों मैं रोया मेरी मेरी करत जिहावे जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम से आया नामो नाम मिली वडी।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर।

मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिदै बड़ियाई, अंत न साहू संग सहाई। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

आई। बारह जो जन छत्र चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो। पाछे बौर नावन पावो अमृत बाणी कटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटावो। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला। जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला। सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा। असगा अस उसगा हर का बागरा। नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना। तर्क नचा प्रमैया चा केसवा बचौनी अये मैये।

यम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी।

मादो गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव दिन भगत नहीं होए तेरी कह रहा।

मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पस

तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनाश्री बाणी भगता की त्रिलोचन इको ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित तात्विक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारी कर्म कर कपाल मसी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मसी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटेरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राज

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी पगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का गऊ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी सर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूर पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था जैत सरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैत श्री महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जय श्री मैला चौथा
सतगुर साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए बा, जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा। जैत करी मैला चौथा, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, तर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री मैला चौथा, सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुरु हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा, हर के अर्थ खर्च नह साके, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरयो मन मूड़ा। जैत श्री मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा, हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा, हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा, हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा,
सुन हर कथा नाम लै लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करें दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग ओ महाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप ओ महाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महा।

रहाओ। मात पिता बनता सुत बंदत इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को ना सहाय। मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदह तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए ऊट सिदायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाये।

देहो संदेश रो कहियो प्रय कवियो विषम पई मैं बहु विद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो वर्ण ना दिस चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अलपियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो बेकुमार बेअंत बढ़ दाता मने गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को जैसरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसे बसेरा रहाओ सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से परम अंधेरा थान सनंतर सब नी जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी से आनप चिंत विसारी अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग पर्यो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैसरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैसरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुख

तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम। चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन। मने चरावो तूप हार परयो तुमरे प्रभु द्वारे। दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना। दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो। हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत किरपाते मां बिखियाते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन। चित

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ ना

ज्ञान कर कृपा साधु संग पेटे पूरन पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लय लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंत पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय।

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौ पायो। रतन राम कटही के

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नावा हरजू

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा पै मर्दे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण देह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहिन कछ जप तप।

मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तुहारे पायो ना इतने पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा, नानक शरण पर्यो।

श्लोक। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। छंत। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे, हों फिरों खोजंतिया।

जय। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पूरा।

चाले हाँ किस चिते या हिक दूं हिक चाले अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

आई। माँ मंगल रह सिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सो।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन बिकराल माया को प्रसादी कूली है लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद्या के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मई अल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्भ अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्योहार बनता ए करत बिहावे कुछ दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उदम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नह नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया।

कर रथ असदिए रच भले संजो। सुत बन का साजन सेवक दिए प्रभ देवन जो हर सिमरत तन।

خبیں دکھڑے اولائے پوری کوٹ اگا سب ناس ہوئے سمرت ہر نام من چندے

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छत्र चमर तक आसनं रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबर।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर

नच भोग रसमिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभु दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

ओ मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई। वडे भाग

गुरनानक पतत उधारणे भोजन भिखम असदाम गुर बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणे।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत ना ए मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान ना कियो, एक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, ने बूझियो अपनायो। पर उपकार ना कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया।

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पाओ दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गाओ आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभु हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

रोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायण, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास।

प्रभ एक बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

तप्यो रे मूड़े कछु ना सोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके

पूरो मन हर रंगो लोड़े गाली हर नी न होए राव हौ तू देंदी दर्शन कारण बीती बीती देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो डीहर न्याई मोहे फाक्यो रे रहाओ कणो कणो कणो सज लोड़े बिन लेने कैठे पा

पंच दोख और अहंग रोग के तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान, रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे। अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान, आठ पैर रसना गुन गावे। जसपुर अगावे समरथ कान, तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दह जिस रव रया जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कबो न मरते चूर कंद बंद दिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहा छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा।

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

कनक कामनी के रस महकीरत प्रभु गाए रहाओ। जब चूठे को साथ जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणा।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो रहाओ। पंडित होए के देख बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव सुख।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणे के कर हींग अच्छे, पैसर माथे सींग गो, देवल मदे लीग अच्छे, लीग सीग हींग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मजे बेल गो, माली के कर केल आछे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद आछे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम आछे, राम श्याम गोविंद गो। राग बैराड़ी महला चौथा, कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुन मन अकत कथा हर नाम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पज गुरमत हर राम राम रहा, नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावे राम, शंकर करोड़ तेतीस त्यायो, नहीं जानियो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उपाम, नानक कृपा करी हर जिनको, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस।

तन हर नी को गुरु सतगुरु दान दिवायो रहाओ। किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपे तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हमें रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्तारा विचता तू पंच आप पा।

सारा कोट कुटुम करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंश न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर सो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर प्रीत सब चूठी चित सुन में बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किस कीमत

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तुलंग महला पहला कर पहला

आखिर दे अस्तम कस नादार दे चूं सबद तकबीर सब रोज दस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे नने की कार करदम मम की चुनी अहवाल बदबख्त हमको वकील गा।

तन माया पाया प्यारे लीतला लब रंगाए मेरा कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए हो कुर्बाने जाओ मेरवाना हो कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ सुना कह लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला प्यामड़िए मानड़ा का

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साए साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेते हो गनी रहाओ कौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित नावे जित आए चंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। करुणा

हरतिया कथा कहानिया गुरमीत सुनाया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम तुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो

से आप हर पाया हर दर्जे तैनाया हर आप गलनाया जो गुरमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पीजे पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर करे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ हों गुरु विटो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हों वेख वेख गुरु विजसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सो सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आसी है कहो कित दिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वदाने हों सतगुर को सगवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू साहिब तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंग

जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा मात पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर गीतो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

जेविद गुरु उपदेशिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार कै दो प्रभ सरनाई। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। देव कतेब इस तरह पाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

और क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाप सा सामले बरना। अस्पत गजपत नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होय निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशन कामा रहाओ। ए मन इतिहास करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित सत्सर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई। भगत हीन नानक जन जमते हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पंजवा कर दूजा इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर वसे ना बाहर जाए अमृत खोद काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे बांधन बांधिया सब जग पवे। सेवा करे सो चाकर होए जल तल मैयल रव रहा।

पहला पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पावसी पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी एक द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा के लोग सुनाए सी नानक आपने।

जोग ना कुंसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना संगी वाये, अंजन मन निरंजन रहिए, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दृष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश भी संकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत के उपाये, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाये, वाजे बाजों सुनजी वाजे, तो निरपो पद पाये, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगत तो पाये, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मई

कतहू तीतर सो सो टोली इन बिद चुप रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जावे।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सत संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंग लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर गौर न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के त्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित न आयो मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलेत पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पायो खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा तू चुड़ाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा।

नानक हर रस हर रंग समावे, तू ही महला चौथा। जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए, हर रस जन चाखो जे पाए, तौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार, मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रघुदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भय।

छोड़े हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका मुख अखर तीरथ तिन तिल कढ़ाए। जन नानक तिन को अंगिन परसे जे कृपा करे हर राय। सुई महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिख लिलारा। तिनकी वकीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वे तो उनकी रीस करे तिस हल्त पलत मुहकारा। से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा से हर पाई है सिर हिंदक कै पवे चारा। जिस कर वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौ पीढ़ी आग जुगाद बकीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा जिते हर आराधी है तिथे हर मित सहाय। गुर कृपा ते हर मन वसे होरत विद लया ना जाई। हर तन संची है पाई जे हल्त पलत हर होए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है होर थे होर तू पाए हर तन किते न पाई। हर रत्ने का वापारिया हर रतन तन व्याजे कच्चे के वापारिये वात हर तन लया न जाई। हर तन रतन जरे हर मानक हर तने नाल अमृत वेले वत्ते हर पगती हर लिव लाई। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही। हल्त पलत हर तने की पगता को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। ए हर तन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया न जाई। हर तन को उचका नेड़ न आवई जम जा गाती दंड न लगाई। साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया तिना एक विख नाल न जाई। हल्के विशाक दुहेले पै हथों छुड़ गया अग्गे पलक साकत हर दरगे टोई न पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनो दे तो हर तन लग चलाई। इस हर तने का तोता कभी न आवई जन नानक को गुर सो जी पाई। सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे सो भगत को परवान। किसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसिया हर पुरुष भगवान। गोविंद गुण गाये।

जो दूजै पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो

कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब दुनी निधाना, तुमरी मैं मां बरना साको, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम कर तोई, ज्यों पावे त्यों राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आ गए अरदास, मैं होर थाओ ना ही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे, विचे धरती विचे पानी विच काश अगन तरी जय, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जय, हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती चर

क्या तुझ पे आग सुनाइए, बुरा पला तुझ सब सूझे, जिहा को करे तिहा को पाइए। मेरे साहिब तू अंतर की दिल जाने, बुरा पला तुझ सब सूझे, तुझ पावे तुवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस पगत आए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सबको तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करें केहा को होवे, बिन नजरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो खाए पाए। कोई महला चौथा, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुकत पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग भय, गुरबचनी जिना जपया मेरा।

कर सकी अपना कीता किसु न होवे ज्यों हर पावे त्यों रखी है मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किस कर हम साके ज्यों पावे तिवें बस रहाओ सब जियो पिंड।

जल फल मैयल रहा भरपूर, निकट वस्ते नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाये, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने।

माने हुकम तजे अभिमान तैसो राती रलिया माने सुन सकिए प्र मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी रहाओ सकी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सा सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहे।

सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुणकंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंकरी।

मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विछाई सरद अपारा नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रवताई खोज चरयो देखो प्रह जाई सुन सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई किन विद हीरो तीरे निमानो मिलता जन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती तिर सज्जा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे तिर बोलंता कई निराशी बहुत दिन लागे देश दिसंतर में सगले चागे किन रह न पावो बिन पग पागे होए कृपाल सब मिले सवागे पयो कृपाल सत्संग मिलाया बूझी सब तरह फिर पाया सगल सिगार हूं मुझे सुहाया कहो नानक गुरु परम चुकाया जय देखा तह फिर है पाई खोलो कपाट का मंथ है।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद पित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन तरसे चरनारे, पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदासे पुरख वाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बूझे ना आना, माया मोरंग लपटाना। रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा, सात जना का दर्श ना जीता। कभू ना समझे अज्ञान गवारा, बोर बोर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिके नाद कर्म सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाए चूठे सब तंदे। रहाओ कहो नानक प्रभ बस करी जय। कर कृपा मोहि साथ संग दी जय। तो किस पाये जो हो ये रे ना, जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा, कर में ठाकुर नदर ना आवे। गल में पान ले लटकावे, परमे पूला साकत फिरता। नीर बिरोले खप खप मर।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो।

गीत नाद अखाड़े संगा उहा संत करे हर रंगा तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वर्खा दोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही मैला पंजवा जा कह दर्श पाप कोट उतारे पेट संग ए पवजल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम सितारे रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे जा की तैल जमदूत बिदारे जा की तीरथ इस मने सुधारे जा के सिमरन मुख उजलारे प्रभु के सेवक

कृपा निधान नानक कहो करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तू ही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट गई अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरे दिन रह नारे, सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जाको बिन सतबार न काई, ए सुखना सोत नहीं जाने।

जाकै सिमरन कछ पौ ना व्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण धारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मान अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे को चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में

पहचाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, हाथ पैर हर हर जस गाइए।

साची पूरन निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला। सुही मैला पंजवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा ए बिनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे रहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किने।

कोट आवज किस वेदत नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिन ओद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ राम।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्रभ चरण कमल रिद महे निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो, रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना।

कर कृपा प्रभ अपना करया। तुम्हें छदाय लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा, दीन छदाय दुनी जो लाए। दोही सराय खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान। अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच।

दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया बुर पर साध नान।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

सद गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माधवे पज

करण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साध संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे। गुर पूरे मिल पाप सजायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार गम त्याये। पूरब लिप्त हुए ता पाइये, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संतर वाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा ते, राम रसायन अंदिन माते। वहां पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उदर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिसकी गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। कर पूजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संतर वाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा और न कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। सुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग

दया न पाई, अनेक जन्म बीतने परमाई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दी जाए किर्त पवाई, सुन साजन सं

कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग ए

ने आई। पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाई, अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार, कितवो मन आशा करो जन का।

जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया, रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया तिन तिन तिन तिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहा आनंद करिया, नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविध क्रिया, पर को हिरिया दिखना क्रिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरी

रात मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

सत तेरी सामग्री सत तेरा दरबारा सत तेरे खाजीनिया सत तेरा पसारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हौ कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपा

निमृत छूट है संतोषागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी करिए। रहाओ को तीर्थ मजन स्नाना किस कल में महल परी जाए। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जाए। वेद कते छिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई, पगता बन आई प्रभ अपने स्यों, जल थल में यल सोई रहाओ, कोट अपराधी संग संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पै निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई, तेरा मान पान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा।

भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुख दाते पेटिया सतगुरु पूरा। तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या करता, कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राय मुझसे कछु न होई, आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई। रहा गणती गणी न छूटे कतू काची देह आनी, कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याय, तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाये। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हों बल जाई।

सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाए उस वेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ है कृपाला, सतगुर पूरा पाया। सोही मैला पंजवा, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, दयाल होए जिस ऊपर करते, सो तुद सदा त्याए। मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी, अरदास करी प्रभ।

ये दर्शन को बल जाई अमृत बचन हृदय और धारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुझ पे सारी तुझ जेवड अवर न कोई जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

कर कृपा गुरुदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी रहाओ। आस पहर प्रभ अपना त्याई गुर प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला। राग सुही अस्पदिया महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहाओ। सह सिदार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे से तीरतियां जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन नाहे जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े नैले चित

से पशुआ से टोर जियो, नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो, सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी पुख जियो, बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जिंदार जियो, लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो, सच्चे की लिव उबरे बख्शे बख्शनहार जियो, अनको की जय मित्रा, खात रले मर जाए जियो, बहुरंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो, नजर प्रभु ते छुटी है, नदरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो, किंचो तान विगुची है, बुरा पला दोए नाल जियो, बिन शब्द तै रत्या, सब जो ही जमकाल जियो, जिन कर कारण तारिया, सबसे दे आधार जियो।

गुणसार अंतर तू वसे मन माहे सहजे रस रसे मूरख मन समझाए आँखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना जे चले गुण नाल ना ही दुख संतापना मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है मरसी हो विडाना मन तन पंग है गुर की कार कमाए लावा तारे आनिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की।

जो आरन लोहा पाए पन कड़ाई है, क्यों साकत जोनी पाए पवै पवाई है। दिन बूझे सब दुख दुख कमावना, होमे आवे जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखन हार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है। तू देखे थाप उथाप दर दीना आई है। देही होग खाक पवन उड़ाई है। इहो किथे कर औकात महल न पाई है। देहो दीवी अंध कोर कब मुहाई है। गर्भ मुसे कर चोर किस रू आई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दीपाई है। लाल रतन हर नाम गुर सुरत बुझाई है। सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम विसार एनस्त्याई है। जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की टेक नाम है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवे रजाए परम तौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कै, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै। हो ना ही तू होवे तुद ही साजिया,

बिन सदगुरु नाम ना जाते, गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे, गुरमुख हो वैता एको जाने हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे स्यों लिव लाई, शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कार सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे दिखते संसारे, माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए, साचा साहिब सब सिफत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे होमे विच्चों जाए, आपे दाता कर्म है साचा साचा सब सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप साचे रंग राता गुर कैसे सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए, जम काल बादा कृष्णा दादा बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सतसर नावन गुरमुख आप बुझाए, असर तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किस केरा गुरमत कह न जाए, हुक्म होवे ता निर्मल होवे होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी कृष्णा अग्न बुझाए, गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने गुर के पाए प्यारे, सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए त सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अप सवालियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द संभाले हर की भगत सदा

काया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली गुरुमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसे अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगत बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखन पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निद पाई है गुर के शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, ए मन वतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाईए मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी, रासूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुनिया ना साला है जो मरवंशी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा रे परवाहो रहाओ, दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिए वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना भुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना कहना किछु ना जाए। महापुरखा का बोलना होवै कितै परखाए। ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवट पागी जे ओ

मन मुख मन ना पिजई आत्मै ले चित कठोर सपै दुज पियाई अंदर विसने कोर आप करे किस आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सू लिव लाए हों मैं मेरा छड़ तू ता सच रहे समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर सब स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो संभाल, एहो खर्च अखुट है।

ना कोई जन्मे ना मरे, ना कोई दुख सहन, गुर राखे से उबरे हरसों केल किरण। सज्जन मिले ना विछड़े, जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नाम सच लहन। सूही महला तीजा, हर जी सुखम अगम है, कित विद मिलिया जाए, गुर के शब्द परम कटी है, अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन, हो तिनके बलिहारण, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, पुर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन। वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है, ब्रह्म वसे सब थाए, मंगा किसनो आखी है शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला चिचर आखदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताए, कृपा करें तो सतगुरु मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे कुख देहे ता इत ही राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सोखाई। नानक गरीब कह पया द्वार, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अराधी, जे मार कढ़े भी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई। जे तुद वल रह ता कोई किहो आखो, तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर, पै पैरी संत मनाई। नानक विचारा पया दीवाना, हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसे, पी गुर देखन जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा, गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाए। ज्यो धरती सोब करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई।

जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तुझ सेवक पैद रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख

बिख्या कै संगा मन व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कप पाई है पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कभू नहीं त्रापे।

जान ना पाईए प्रभ दरबारा, आसा अंदेशा बंद पराना, महल न पावे फिरत बेगाना, सगल ब्याज के वस्त्र दीना, फिरत प्यास जो जल बिन मीना, कछु सियानत उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल लहो नानक अरदासे, पयो कृपाल।

चूरमरों से वाडिया हौना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा हिरु महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर तासुके तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मु दातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाप जुलाई पंद पाओ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां।

ओहो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवानिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहा पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर नुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भर्म ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला कुछ जी ओंकार सतगुरु प्रसाद। मंज कुचजी अमावन दोसड़े, हो क्यों सो रावण जाओ जियो। इक दू इक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्नी सखी सो रावया से अंबी छावड़िए जियो। से गुण मंज न आमनी हो कह जी दोस्त रे ओ जियो। क्या गुण तेरे विथरा हो क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो। इकत तोल नाम बड़ा हो सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो। से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो। हो इनी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली साहुर है क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो। तै सहनालो मुतियस दुखा कू तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा इक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको, तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो। पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो। पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो। पाणे सो सो रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो। पाणे सो पिहावला हो आमन जान मोई आस जियो। तू सहो अगम अतोलवा हो कह कह तै पई आस जियो। क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो। सुही महला पंजवा गुणवंती। जो दी सह गुर सिखड़ा तिस निव निवला गो पाए जियो। आखा बिरथा जी की
गुर सज्जन देह मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो। ए मन तै कू देव सा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

दुख गवाए जियो, इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाव जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा, न लगे तत्ती वाव जियो, हों आपको बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाव जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया फसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिकड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। जो गुरु

जोबन बाद गवाया, वर कर दर दर्शन नहीं जाता, फिर का सह न पाया। सतगुरु पूछ न मार्ग चाली, सूती रहन विहानी, नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलानी।

त्रिभुवन तंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे, जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा कर पूरे। हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वे से, नानक में वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे। बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहरे बलराम जियो, सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो। कृपाया करते कर पाया मेट न सके कोई, जान जी ना उन रहने केवल रव रहा तिहु लोई।

प्रभु चेते। बाबुल बुतरी दूर ना आवे कर पइए बलराम जियो, रहसी देख दूर फिर रावी कर सोइए बलराम जियो। साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने, संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सच संतोष सभा सच पल्ले, सच बोले फिर पाए, नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंख समाए। राग सुही मेला पहला संत कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया, हम दिन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए। पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए, आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे। सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया, मंथन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना। अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो, जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना, सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा।

सब खेल तुम्हारा, सब खेल तुम्हारा, अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए। काल विकाल पै देवाने, मन राखिया गुरु ठाए। नानक अब गुरु सबद जलाए, गुण संगम तब पाए। राग सूही महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आओ सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आप लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सवाए। नानक साजन को बल जाइए साथ मिले कर आए। हर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम। हर मोहड़ी साथ सब ठाकुर देख राम सी राम। गुण संग्रहन सी खरी सरसी जा रावी रंग राते। अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाते। तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे। वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम। फिर रावेड़ी सगदरली रव रया नह दूरी राम। प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई। आपे रसिया आपे रावे जो तिसदी वड्याए। अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सत्पाई है। नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़ी है मारड़ी है ते लोआ सिर ताजा राम। हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो। नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो। पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंत महला पहला हर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया व्याहो हुआ सोब सेती पंच शब्दी आया।

आखणता को जाई है जे फूलड़ा होए, जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले, सुने देखे बाद कहे है दान मंगिया देवे, दान दे दाता जग विधाता।

मैं सोई गुर की पौड़ी सास की साचा सुख होई सुख सहज आवे सास पावे सास की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप चलियो क्यों चले परपंच मोह विकार साके कूर कपट न दोई मेरा मन राचा गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो साला ही है जिन कारण किया मैं लागी मन मैं ले किने अमृत पिया मत अमृत पिया ए मन दिया गुर कह मोल कराया आप नड़ा प्रभ सहज पछाता जामन सा फैलाया इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर से तीराता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया पंच को नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवा

कौन अपेवे तंस मंस पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजै गुर शब्दी सच जानिया साजन होवन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करें रलिया करम करम सबाया अठ हठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेथिये क्यों पादर जाने आप सहमत होछिये क्यों राह पिछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूडो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेथिये सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन परदेसी जेती है सब देश पर आए। गुरमहली कर अपने सो कर कुरलीना, सेवक सेवा तो करे सत शब्द पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

ऐसोई ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल न फुले जय जयकार करे तुझ पावे गुर के शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारे बलहारी गुर अपने बिटों जिन कारे सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कह सुनो जन पाई सुख सोहिलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सहज सुभाए गुरमुख सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण को पागा अंदरों दुर्मत तूजी कोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा पीनी मेरे स्वामी तिन अमदिन हर गुण गाए सुन मन पीने सह सुभाए जुग में राम नाम निस्तारा गुरते उपजे शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविक सब गवाए सबको तेरा तू सबना का हो तेरा तू हमारा जुग में राम नाम निस्तारा साजन आए उठे कर माही हर गुण गावे तृप्त अभाई हर गुण गाए सदा तृप्त पासी फिर भूख न लागे आए जय जिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम से आए नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजन आए उठे कर माही एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा भगत जना की हर जियो राखे जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवे हौ मैं सबद जलाया राम हौ मैं सबद जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी सच्ची भगत करे दिन राती गुरमुख आप लखाणी भगता की चाल सच्ची अत निर्मल नाम सच्चा मन भाया नानक भगत सोए दर साचे जिनी सच्चो सच कमाया हर भगता की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम हर भगत करे विच्चों आप गवावे जिन गुण अवगुण पछाने राम गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने पै भगत मीठी लागी अम जिन भगत करे दिन राती कर ही मैं बैरागी भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेखे सदा नाले नानक से भगत हर कह दर साचे अम जिन नाम संभाले।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नाम सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पत खोई। भगता के कर साचा, हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना पे दिया, काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया, सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुभाया, हर जन ऊंचे सभी ऊंचे, गुर के सब सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोगा पाया, सुही महला तीजा। सब सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होई विचारो राम, हौ मैं सब किलब काटे, साथ रखिया उधारे राम, सच रखिया उधारे दुत्तर तारे, फिर पाव जल करण न होई, सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी, जिन सच बिठा लिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई, नानक साचा साहिब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे सतगुर साच बुझाया, तप राखे सच सोई राम, सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम, साचे नाम सुख होई, मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा, ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाय प्रगासा, जिन्नी सच जाता से सच्चे होए, हम दिन सच ध्यान, नानक सच नाम जिन हृदय वसिया, ना बिछड़ दुख पायन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, चित का सोहला होई राम, निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम, सब सच वर्ते सचो बोले, जो सच करे सो होई, जय देखा ते सच पसरिया, और न दूजा कोई, सच्चे उपजय सच समावे, मर्जन में दूजा होई, नानक सब कुछ आपे करता, आप करावे सोई।

राम तित तंग मैल न राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए अंजन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले बड़े आई प्रभ रावे रंग राती।

बहु कृपा तारी हर कै सब सुहाए राम मिल सब सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड पागी जे चले सतगुरु भाए हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसे इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड पागी गुर पाया कट कट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया।

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमेय गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नाम सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विचर करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुरु गुरपुरा।

निरपो कै मन होए हों मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी

कछिए अकप कहानी। हृदय हर हर हर तुन उपजी, हर जपिए मस्तक पाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो। गुरुमुख मिलिया सुभाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभु आया, अंदिन हर लिवलाई। मन सिंधिया फल पाया स्वामी, हर नाम।

पूजा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभु पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रहे रिलाए, वड्या पाग गुर पूरा पाई है, अंजन नाम से आए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परम पागा, हो मैं बिन ठीक पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हो आवासा।

खास शब्द विलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा।

आई राम अंतरे हो में ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे।

पास न जाए। हम पूछूं अपना सतगुरु दाता किन विद दुत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए, गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया वडपागी, सच नाम लिवलावे मत प्रगास पई मन मानिया, राम नाम वडिआई नानक प्रभ पाया, शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, हम मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुणता से, तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सब आसे, वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा, कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा, हों तुझ बाजू।

चल चल परमिया मन मुख परम कुल आया, नित आशा मन चितवे मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया, जन नानक।

अदह नाम लो गोविंद नाम मजीठा, तीर है लाला अत गुलाला, शब्द चीन गुर मीठा, मिथ्या मोह मगन थी रहया, झूठ संग लपटाना, नानक दीन शरण कृपा निद, राख लाज पगवाना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचे कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो, निचल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु हुए दा

कहते पाई साचे सृजनहारा, जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दस पेटिया गुरपुरा नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया, बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी, गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ, नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, सुख दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे, सुन पै विनाशे सगल नानक, प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है, इक हर बलराम जियो।

गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अंगन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जाने, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आ गए, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल।

बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर करया हर चरण जपत निस्तरया, हर चरण के आए सब फल पाए मिटे आवन जाना। पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जप देखा तब सोई।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जैसा मत दीजै, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण हो जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कण चेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम दोहरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम, हो किछ नाही, एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमक प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे।

तू करवत मेरा ओला राम। है बल बल जाई लख लख लख दरिया, जिन प्रम पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यो मन माना, प्रभु जी पानी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खुला, कहो नानक हौं निरपो होई, सो प्रभु मेरा ओला। सूही महला पंजवा। साजन कोठ सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अगर न जाना राम। मात पिता ताई सुत बंदक, जी प्राण मन पौना राम। जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा पर पूरे, अंतर जामी सो प्रभु मेरा, सर्व रहा पर पूरे। ताकी शरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभु को बलिहारे, नानक सब कुर्बाना। ऐसा गुरवड का गी पाये, जित मिले प्रभु जापे राम। जन्म जन्म के किलविक उतरे, हर संत तूरी नित नापे राम। हर तूरी नाइये प्रभु ते आइये, बाहर जोन ना आइये। गुर चरणी लागे प्रम को पागे, मन चिंदिया फल पाइये। हर गुण नित गाए नाम से आए, फिर सोग नाही संतापे। नानक सो प्रभु जी का दाता, पूरा जिस पर तापे। हर हरे हर गुण निदे, हर संतन के वस आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे, तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया, हर पूरन कृपा सारी। सफल जन्म हुआ तो पागा, हर पेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिए, मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो, पुन्नी इच सदाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे ना आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम से आया, सगल मनोरथ पाए। सांस सहज आनंद कनेरे, गुरु चरणी मन लाए। पूर रहा कट कट अविनाशी, थान थन कर साई। कहो नानक कार सगले पूरे, गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेवा दिहो मेरे प्यारे, मुख हर आरा दे मेरा राम। हर आरा दे जम पंख सा दे, दुख ना व्याप कोई। जल कल मैयल पूरन स्वामी, जत देखा तत सोई। परम मोह विकार नाथे, प्रम नेर हूते नेरा। नानक को प्रभु कृपा कीजे, नेत्र देखे दर्श तेरा। कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी, सगल मंगल सो क्याना। हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सह सियाना। कलमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा कीजे, हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावे, चरण चले प्रभु मार्ग राम। हर सागर नाम हर सेवा, जो चढ़े तिस पार्ग राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे। महा विकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे। मन बांचत फल पाए, सगले कुदरत कीम अपारग। कहो नानक प्रभु कृपा कीजे, मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड्याई, एहो तन होए वडपागा राम। एहो रंग एहो रस होगा, हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभु की शरणे, करण पारंग गोपाला। सब किस तेरा तू प्रभु मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभु कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा।
सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर जो गाय परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत पल साचा अब चल नीव रखाई जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बनियाई आनंदा वजह नित वाजे कार ब्रह्म मन उठा राम गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पैच उठा राम अनहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर मैं नव निध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशि राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच कर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल खल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याय साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल्प पल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सुही महला पंजवा तै सागरो तै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी करिए बहुत न मरिए चूके आवन जाना जो किछ करे सोई पल मानो तामन सहज समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आ गया तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाय सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग विनोद कहे नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप नरे प्रभ आप सिगारी सोभावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी
हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुरु पूरे, नाम सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रब तया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रब आपे कर प्रतपाला। जय दिसपुर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान त्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन, अनहद बाजे सुनिए राम। अनहद चुनकारे तत विचारे, संत गोष्ट नित होवे, हर नाम आराधे मेल सब काटे, किलविक सगले खोवे। तह जन्म ना मरना आवन जाना, बोर न पाई है जोनी है, नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साध छुनी है। सूही महला पंजवा, संता के कारज आग खलोया, हर काम करावन आया राम, तरक सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्या।

खाप खसक दिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठना थे दुख न नेड़े आया शांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूछ सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार इतन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी जिन उद्दम की आताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अखर तीरथ पुण्य क्रिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती ममता ने अमृत पी जय बिनवंत नानक इच्छ पुनी पेख दर्शन जी जय राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार ससुर प्रसाद विठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल तकली जी ओ कदे ना बोले कौरा कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान अवगुण को ना चितारे पतिस्तान हर बिरद सदाए एक किल नहीं पन्ने काले खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग छारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस देवल अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जब सागर तरया कब जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कहया जी।

बार राग दोख से न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

जाए कर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा ने स्वामी बड़ पागी हर हर गाया।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसने माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेस करी वेसी सो न पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेल है सो तुद मिले सोई सत्यारा। श्लोक महला तीजा सुहविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीद सचराओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सुहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंड ए आनी दुमनी सू है वेश लुभाए सब सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाए नी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूह वेश पावन कुलखनी जो प्रव छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो गए लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सुहावे सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेय सहरे बहु सोदा पाए तिस पूज करे सब संसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सुहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विदान पंच तात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए पो आइए मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

वे छड़ तू तांतिर लगी प्यार तू है वेश तिर किने न पायो मन मुख बज मोई गवार सतगुरु मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार महला तीजा मुंडे सूहा परहर लाल करो सिगार आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार मुंद सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूर कुटंब है मन मुख मुग्ध रता हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता फिर वेला हथ न आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया नावे जेवड होर दात नाही किस रूप न ना रिखिया नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करें विकार चलन सार न जानी काज सवारन हार महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई जे बहुता काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक विखा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई करता करे सोई श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या नानक एहो पटंतरा तित दी दान गया महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारिया लग पै गवारी जिनकी एक से ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया को बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो तरे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे मैं ना तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार सेजै कंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखता रंग सिउ हो मैं तिसना मार मनसा निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप खड़ोवे आप कर आप पीने आप आहो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मन मन खसम धराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थी मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रव रहा हर हीरा हीर जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फिर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला नानक एवपन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंधे ताल। महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही कितनी लहास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच पुरमान सदा ने चल रव रहा सो पुरख सुजान गुरु प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान छोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नाम चले तीर्थी मन खोटे तन चोर इक पौ लखी नात्या दो पा चढ़िए सहोर बहर धोती तू मुड़ी अंदर विस्निकोर साध पले अन नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएदा जग तंदे लाया इक आपे ही आप लायन गुर ते सुख पाया दै जिस ए मन पाऊंदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखिया मेट न सकी जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दोए जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जारे खुले हट हुआ पार जो पहुंचे सो चलन हार परम दलाल पाए निशान नानक नाम लाहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई। महला पहला राती होवन कालिया सुपेदा सेवन देव बग्गा तपै कना कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कभे न पावे मान। पौड़ी
काया कोट रचाया हर सच्चे आपे, एक दूजे काय खुआयन हों मैं विच व्यापे, इव मानस जन्म दुलंब सा मन मुख संकापे, जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर खापे, सब जग खेल रचायन सब वर्ते आपे। श्लोक महला पहला, चोरा जाड़ा रंडिया कुटनिया दीवान, वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान, सिफ्ती सार ना जाननी सदा बसे शैतान, गधो चंदन खौली है पीसाहू स्यों पान, नानक कूड़े कत्ते कूड़ा तनिए तान, कूड़ा कत्तर कछिए कूड़ा पैनन मान। महला पहला, बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान, एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान, नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान। पौड़ी, माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया, हों मैं चगड़ा पायोन चगड़े जग मोया, गुरमुख चगड़ चुकायोन इको रग रहा, सब आत्म राम पछाणिया पौदल तर गया, जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया। श्लोक महला पहला, सतगुर पीछिया देह में तू समरथ दार, हों में गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार, लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार, एनस नव तन निर्मला मैला कबू न होए, नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए। महला पहला, इको कंत सवाईया जिती दर खड़िया, नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया। महला पहला, सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित, मैं तन अवगुण एतड़े खसमना फेरे चित। महला

हर हर नाम सलाहिए सत्कार कमावे दूजी कहरे लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाई।

क्यों ना मरी जा रोए जा लग चितना आवई महला दूजा जा सुख पासे रावे हो दुख भी संभाले नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे परवाओ है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इक ओंकार सतगुरु प्रसाद अवसर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख करके

सूही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रहन गई मत दिन भी जाए पल गए बग बैठे आए रहा काचे करवे रहना पानी हंस चलिया काया कुमलानी त्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा काग उदावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहां गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जाको हर रंग लागा तम तम सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया तया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना खाक स्मार

जब लग कट में साता जे कट जाए ता पाओ न जासी हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे किसे प्यासा हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा जो जन जान पजे अवगत तो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सवतावे रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मा पैना ही बहुविष्टाला लेही। बेहतर कर एक पुरुष समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने तज अभिमान सुख रलिया माने तन मन दे ना अंतर राखे अवरा देख ना सुने अपाखे सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी जिन ना निरंतर भगत ना कीनी पुर सलात का पंथ दुहेला संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दमंद दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही करना पूछ रहन फिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर दमन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाके आना तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे सब कट पीतर हाथ चलावे कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हृदय नाम सवार सवेरा जन्म सिरानो पंथ ना सवारा सांझ परी दह दिस अंधियारा कह रविदास निदान दीवाने चेतस नाही दुनिया फन खाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई एक करी फुन रह न होई यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंग सहेरा कोई भी लागे काट सवेरा कर की नार उन्हे तन लागी तो पूत पूत कर पागी कह रविदास सब जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की।

तैसाय की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। तेरे बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपालता प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंड अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोतीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सके ओ बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जा।

सच में रहो रजाई रहो जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चुकराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अपथ न कथ न जाई जो तुझ पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई केते कुकर हो बेगाना औका स्तन पाई भगत हीन ना।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब

तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे, जो तुझ पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे कान, तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलख अधेओ। रहाओ माया मोह तरकटी नार, ऊंदी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चांगन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना होए, एक एक को ना ही सौ कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम फुले बौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जियोरा रह ना सके, खिन सतगुरु बूझ बुझाई। रहाओ मेरा तब विसरे, हों मरो दुखाली, सास विरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिया गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हों में लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा, हर पहला।

तिस अंतर रवै हर नामा रहाओ। चौ जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखा नो एक निधान, जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है, कल में कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना कर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी त्याया हर हर, जग से पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे सों प्रीत लाए, चूके मन अभिमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावे आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाइए, हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए, हर जियो आग बसे मन आए, आचे शोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए, गुरमुख राते सबद रंग आए, निज पर वासा हर गुण गाए, रंग चलू ले हर रस आए, यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा, नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा, पूरे गुर ते वड्याई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई, हों में माया शब्द जलाई, दर्शा ते गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा, हम दिन अनध होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहा। मन की प्रतीत मन से पाई, पूरे गुर ते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसर वेख है, बहु न मरे ना जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुरु दिखाए गया अभिमान, सद ही लागा सहस्यान, हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुर ते नाम से आई, जय देखा तेरे समाए, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामे, ज्यो प्रेरे त्यों करना, ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिख लिखे गुरु पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत नित कही है, हर की ये पतित पवन्ना, ओ तो वै तोर हाथ चम चमरे, हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पव कारण, हम पापी रात कपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन मानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा, हम मूरख मुगध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा, गुरमत हर रस पाइए, होर त्यागो नेफल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर पारे, हम निर्गुण राख उपमा, तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर गति है वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते, तिन वड दुख सम्मा, कोय फिर जोन पवाइए, मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है, तुर पूरव लिखे वड कर्मा, गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा, हमरा चित लुगत मोह।

बंधन काट मुकुट बुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आत्म दिया, अग्न सागर बूट संसारा, नानक बाह पकर सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन, रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जस जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड़ पागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रब तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिय, बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द

पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम रंग मानिया कर आया पूरे गुरियाणिया बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर कुआर सातक नर थीवे राम नाम हुआ रखवाड़ा चक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचै कनेरे निरपत फाक दले सिर पैरे कहो नानक जपै जन नाम ताके निकट ना आवे जाम राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

परम सोमाप्जित प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना चाहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अतक कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत तिल विक्षवनाशे, अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल, दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाथा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विकम सागर अत पारी, उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल, कम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया, सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया, कारज सतगुर आप सवारया। बड़ी आरजा हर गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वंश ऋण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का पैसो काल रहाओ। सात संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल, आपे सतगुरु आपे प्रतपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, हम दिन कीर्तन हर गुण गान, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आज पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल काग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई, नानक गुर पूरे शरणाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग पार, ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग, गुण गाओ नित राम के ए अवसर जोग। आए बसो पर देश में ए तले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना ए पुर की टाल, बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल, सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज आनंद सुख पूरे गुरु दीन, सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत्र में लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, जो बालू कर बार,
बिनसत बार ना ला गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहा सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो, अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख कर वागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिस केवट पागा, मैला कदे न हो वही नह लागे दागा। प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए। रहो जरा मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार जम गुण तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब कुछ दया तार हम अकीर्त कनारे, लाज परे तेरे दांस्यो नह चित पसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाये। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, निर्प हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साद अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता,

बिन बाद रहाओ। रूप तूप सोगंधता कातर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद, फिर मानस पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद, प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान में गुर दसे तेत, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोड़ते हर हर हर चेत। रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साथ संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ ग्रे शोभा सेत, नेकल आसन मिटी चिंत माही डोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत, गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साथ संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब कम मिटे गत कई हमारी, जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी। रहाओ एक सदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन एह मन पया बिनसी अपदारी, निंद चिंद पर दुखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी, तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल, उकत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल, परम पैरा को मोहते काटो दमजाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए, तुम्हारी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपुर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसापुर, जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली, सब किछ तुम ते मांगना वड़।

राज मिलक सुखबारिया अग्नि में जाल संत जना का छोरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पट खोई साकत स्यो मुख जोरे है अदवी चो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत ऊते छूटे सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई दर्शन पेट छाड़ता नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश तर हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो संत जना की रेणका ले माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो काम मलोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास न विसरे अनपते न तावो सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो सत संतोष दया करम शिगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब में प्रगताया जिस जन हुआ साध संग तिस पेटे हर गाया ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ शरण परे की रास्ता ना ही सहसाया कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानुख जन्माया परमाया, नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माती ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे,

डूतर पंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने है। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एह कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले है। ऊंचे ते ऊंचा वदा सब संग बरने है। दास दासन को दासरा नानक कर ले है। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है। दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाए। चिंत अंदेशा गलत ताज जन हुकम पछाता ने बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा कपत ते कई शांत पर सत पाप ना थे अंध कूप में गलत थे पादे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी देन जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साध के पूरन आसा।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतह सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहा औषध हर का नाम है जित रोग न जाते, साध संग मन तन हित है फिर दुख न जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथ है हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ताके

अपार मन से कभू ना विसर सो पुरख अपार चरण कमल स्यो रंग लगा अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभ का को लाओ सेव निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद नानक कभो न विसर प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा कृष्ण बुजी ममता गई नाथे कह परमा सुत पाई आनंद भया।

निंदक निंदा कर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको कहो नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

तुम मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुट है, जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमर नाही, जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस्यों तेरा खेद दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्व सो अपना प्रभु जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब के मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अतना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया, कुन सुख में पाया। सदा सिमर चरणार बिंद शीतल हो पाया, जीव किया अथवा मोया किस काम न आवे। जिन इहो रचन रचाया को तिस्यो रंग लावे। रहाओ रे प्राणी उसन शीत करता करे, काम को काटे कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे। अंडज जेरज सेतज कुछ पुजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंधते नानक गुरकाद। बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा, खोजो बन खान अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना पला बसिया प्रभ संग। रहाओ बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश। ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो बाहर।

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करकार पुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लाजता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी, किछ ऊन न दिसे संत प्रसाद के।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हार राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याग है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समाग है, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भाग है, राम नाम जो जम जपे अंगन सब जागे, पंत मंत नह जोई तित चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन

तो कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है किस दिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग, ताते बहुड़ ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भय बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभु प्रगुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लख सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको।

संसार। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुरु का दास, पार ब्रह्म तू राख्या, दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है, दिया नहीं होर, नान की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय पार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणक हर सब जीव जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजा होए कृपाल, मार्ग संत बताया।

शीतल भय राखे प्रभु आप, नाम प्रभु शरणागति जाता वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभु नित गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार में फिरते तय नाम, नानक के शरणागति कट कट सब जान। बिलावल महला पंजवा, रोग मिटाया आप प्रभु उपजया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप हर की नींदात, गुरु गोविंद कृपा करी।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी खान खनन कर लग रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताती बाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम औखद दिया एका।

उगमताल जीवालयन जहाँ कावड़ प्रताप दोत हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे सुख दुख किस मन की व्यथा तुझी आगे सारे। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हे मेरे परिवार है जो तुम करो सोई तल हमरे तेरे नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पतित संग।

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूर्ण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत है, जासियों राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस त्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केस गहे फेरावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यों पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो।

प्रेम मुख लागो जो वड़का गो सुहाग हमारो कतो न डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा पोत पोत अंग अंग संग।

पंते हुए सगल खरी। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते इह मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वरन न साके एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहें सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र एक निमख जताई है, अचरज सुनियो प्रापक केतले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, पंद बंद हर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी। रहाओ सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी। ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट करी। देखियो मोहन सब कै संगे, पूर न काहू सगल करी। पूरन पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

ज्यों कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परिये। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरिये। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरिये।

करण करावे मुकर पावे ते खुद सुनत सदा संग हरे रहाओ। काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभ हो दयारा गुर के तह काडे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहा। त्यानप ते सब पई स्यानप प्रभ मेरा दाना बीना। हाथ दे राखे अपने को काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोसे कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख ले। अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैं

मंथन अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर उपकार नित इस रसना का मोड़ किस नाही रहा कुल समूह उदरे छिन कीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद से की बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पर आही संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही बिलावल महला पंजवा तीरो देख तुम्हारे रंगा तू ही स्वामी अंतर जामी तू ही बसे साध कै संगा रहाओ छिन में थाप निवाजे ठाकुर नीच कीच ते कहरा जंगा कभू न बिसरे हिये मोरे ते नानक दास एही दान मंगा बिलावल महला पंजवा अचुत पूजा जोग गोपाल मन तन अप रखो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ शरण समर्थ अकप सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखे अपने को किसनो लगे न ताची बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्व सो संत जना तन माल नानक दाचित दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिलेरवाल बिलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन भय साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास कहे रहा जेते पुनः चरण से कीने मंथन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाथा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश है तुह पदार्थ बड पाग लहे कर कृपा पूरन प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण रात सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे सुलही होए मुआ ना पात रहा काट कुठार खसम सिर काटया छिन में होए गया है खाक मंदा चितवत

कहो नानक किस प्रभ बलिहारी, जिन जन का तीनों पूरन वास। बिलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आप वर्ते स्वामी, कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी, अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु,

दो मैं थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक तार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे सह जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर पे खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

प्रभ तुझा सितारी, कृपा निध प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभा पे। बिलावल महला पंजवा, पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्कोर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मुठो, पाप करत नह परी दया।

बिलावल महला पंजवा। अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चक मारत कुशल पया मेरे पाई नीत रहाओ गई विराद उपाद सब नासी अंगीकार कियो कर कार सांस सुख और अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को।

कंठ लाए ऑक्सीजन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक।

तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे असीमा दो खिंचतने दिन श्रेन मन माए बसत है तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जाओ।

करो सोई पल माने, पावन दुबदा दूर करो। नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उद्रहो। मिलावल मैला पंजवा, ऐसी दीख्या जम सो मंगा,

ला पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुरपूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्शन।

उलझियो अलमकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे एक कह हर लाहे अन से टूटी है रिख से छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत

कहां पयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवे। जोग जग ने फल तुम्हें मानो जो प्रभ जस बिसरावे। मान मोह दोनों को पर हर

तो ना है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

नानक कहे अवर नहीं कोए। बिलावल मेला पहला मन का कहे आ मन सा करे इहो मन पुन पाप उचरे माया मद माके तृप्त ना आवे तृप्त मुक्त मन सा

दूजी दुर्मत दर्द न जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़े नाट साला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख किया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंगाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया आये जाये, गुर सेवा तिल है पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

गुरमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्ते, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपके अल

ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਨੈ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न।

अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया।

छिन में तिन तिन कह कहिया। हर सर सागर हर है आपे, इहो जग है सब खेल खिलैया। जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा सतगुर परचय मन।

आसा आस करे नहीं बूझे, बुरके शब्द निराश सुख लहिया। उपजी तर्क दिगंबर होआ, मन दे जिस चल।

मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध कैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज

औजात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई, भगत वचल अंगीकार करैया, नानक शरण।

हूँ आकल बिकल पई गुर देख हूँ लोट पोट हो तैया रहा हूँ रखत फिर सब देश दिशंकर मैं प्रब देखन को बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबोदे गुण कामन कर हर प्रभ लैया भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया सीमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो।

भैया सतगुरु दया करे प्रभु मिले, मैं तुस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभु देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हौं खिन पल रहे।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले छिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल।

मत मेले भगत दृढ़ाए। खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावे ता महल बुलावे, सबदे पेड़े तो पत पावे। कर कर वेख खपे जल जावे, साचे साचे साथ समावे। सप्तमी सप्तम को शरीर, सात समुंद परे निर्मल।

किसने मनुआ रेहा लिब लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा। आई पूता इहो जग सारा, प्रभ आदेश आद रखवारा। आद जुगादी है भी होग, ओह अपरंपर करने जोग। दसवीं नामदान इसनान, अन दिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान। सच मैल ना लागे परम।

डर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे थावे ले पावे, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मांड दया लिवलाए।

आए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सोजी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वक्त है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर निशाने, सतगुर पे ते ता एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मारना का कह कोए, जिस दा साहिब डाडा होए, तिसनो मारना का कह कोए, साहिब की सेवक रह शरण आई, आपे बख्शे देवड़े आई, किसते ऊपर नाही कोए, कौन डरे, डर किसका होए, गुरमती सांत वसे शरीर

अदरया परपूर। एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए, एक को वर्त अवर न कोए, मन रोस की जय जे दूजा होए, सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी, सिद्धि वार

सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, कितनी वार सब आवे जाए, गुर शब्द ने चले सदा सच समाए, कितनी वार ता जा सच राते, बिन नामे सब परमे काटे, मन मुख मरे मर बिकती जाहे, एक न चेते दूजे लोबाए, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करें पेख तारी, पव पव पर मैं काटी सारी, ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक कितनी वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुवार, कितनी वार सेवे मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए, बिलावल मेला पहला संत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब चिगारिया कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया, तन पाए पगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंद नवेल सुंदर देख फिर साधारिया, सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं पगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिय सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया, श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर के पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगसूती संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो शब्द ज्योत जगाए दीपक, नानका पौ पंजनो, ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाइए, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाइए, दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया, बिलावल मेला पहला। मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब जतो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे, पिंगड़ी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी, अपने पिर पानिया तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा, चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया, जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पब निर्बानी, को बिरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए, त्रिभुवन सो जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन

राम मन मार बीजै सबद सीजै त्रै लोक नाथ पछाणै मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाणै मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं कान तकिया तेरो साथ सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो संत बिरावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम गुरपुत हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम निमानिया हर मान है हर प्रभु हर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जाते राम मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रात राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम गुरमुख मिल सुहागनी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम हर हर हर हर राख प्रभु नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिलावल मेला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग गुर पूरे विखा लिया नानक हर लिवलाग संत मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा गे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटियाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो दुलक मसाई राम गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विगसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मूड मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम सलाहे तू।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंस नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा

मेरा प्रभ अगम अथाह सा अटल गणया पूरन संजोगो राम सुख समूह पया गया विजोगो राम निल संत्याए प्रभ त्याए बने अचरज जांजिया मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांजिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस पोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागी बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे दिन स्रे उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिन वंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे इक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत फगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिन वंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोप जनाया मलन मोह विकार नाके दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिन वंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जो

क्यों सरे मोय तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते चीत चित हो मित अंधारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रिय संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कमल रसना गुण।

राम नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सुमर सिमर नारायण पय पारज रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम नानक उदरे।

राग नाद सब सोने जान लागे सहस्यान राग नाद छोड़ हर सेवी है ता दरगे पाई है मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी है चूपे मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुझ उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से रिया तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सो लिवलाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रहे समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वक्त भगता के आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन सिख कर खुद अपर कोई न सके

गवाए। गुण रवे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ। मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपसे ले।

जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चितलाई है गोहज गल सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब दुख लह जाइए जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई खेते हा फल पाए गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संतोष हो सत रसिया मन आए सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दै जिस पथरिया गुर कह कह सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छपे ना किसे दो छपाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे मानस ते देव ते पे सच्ची पदक जिस दे हों में मार मिलायन गुर कह सब सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई जे गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई श्लोक महला तीजा रुज ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए हर सुख पल्लव त्यागया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए कार्य सिद्ध न होनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तिन मल

जिस बख्शै करतार नानक गुरु प्रसादी यो मन तां तरे जा छोड़े अहंकार सासा मनसा मारे निराश होए गुरु सबदी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई अगे सब आपे वरदा हर सच्चा न्यायी पूड़ियारा के मोख टिकिए सच भगत वध्याई सच साहिब सचा न्याओ है सिर निंदक साई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे पाग पुत गुर पाई जे हर प्रभ बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए वडे आई होए मैला तीजा ते मन गुर की सुख सुन पाए गुणी निधान सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान

जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है। तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निलागे।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख वेखन बोलना नाम जपत सुप पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गासिया, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। मैला तीजा मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक छो जन पाई, सतगुरु से यो हो मैं मल जाई, अंदर संसा दूख व्यापे सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कमो न जागे माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी, जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे प्रवाह। श्लोक महला तीजा इस युग में पगती हर तन खटिया और सब जगत परम पुलाया, गुर प्रसादी नाम मन वसिया अंगने नाम से आया, दिखिया माए उदास है हों में शब्द जलाया, आप करया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण पुल्ले हों में मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चुकलाया।

पर न कोई गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवादी आप लखाए जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हस ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला कीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चों जाए जो किस हुए सो सहजे हुए कहना किसु ना जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए मैला कीजा। काल मार मनसा मने समानी अंतर निर्मल नाओ अंधन जा गए कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंधन हर गुण गाओ निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जले हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया जो किसे क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अत कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर की तै किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे जिसनो करते तुर लिख पाया। किस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे कैसी बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती, हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया, विक्षो रचे रचन दुष्टा सेती तिरहड़ी, जंक्षो वाद करन, नानक साकत नरक में जम बजे दुख सहन, पये किरत कमाऊं दे जीव राखे तिवे रहन। मैला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया तान निताने तिस, साथ गिरास सदा मन वसे जम जोए ना सके तिस, हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस, हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस, नानक मन तन जिस प्रभु वसे हौ सद कुर्बाने तिस, जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

गुरमुख नाम गोविंद अंजन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वड पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुर न मंतन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुरु आवे पिछले गुने सतगुरु बख्श ले सत संगत नाल रलावे जो मीह उठे गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होई।

तनवंता अर्मिल तन मनी पापी कछुना कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न कब

बिलावल। विद्या ना परो बाद नहीं जानो, हर गुण का फते सुनत बौरानो। मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक स्यानी मैं बौरा। मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ, आप न बौरा राम कियो बौरा। सतगुरु जार गयो परम मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत कोई। मेरे परम पूलो मत कोई, सो बौरा जो आप ना पछाने। आप पछाने ता एक कह जाने, अब है न माता सो कबू न माता। कह कबीर राम रंग राता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंगा। अजो विकार न छोड़े पापी मन मंगा। क्यों छूटो कैसे तरो पव जल निज पारी। राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारी रहाओ। बिखे बिखे की बात सुना तजी न जाई। अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया किसकी आनी का। ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। तुम समसर नाही दयाल, मोहे समसर पापी। बिलावल नित पुट पोरी गागर आने, लीपत जियो गयो। ताना बाना कछु न सूजे, हर हर रस लपटियो।

सुख ना पयो राव। सुनो जिठानी सुनो जिरानी, अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए। तुह मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी। सो गुरु नाम दयो, संत प्रहलाद की पैज दिन राखी। हर नाकस नख दिद रहे हो, करके देव पितर की छोड़ी। गुरु को शब्द ले हो, कैद कबीर सगल पाप खंडन। संत ले उदरे हो बिलावल, को हर समान नहीं राजा। ए पूपत शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा। रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले, तीन पवन पर छा जा। हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा। चेत अचेत मूर मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसार परम क्यों को, रूप है लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी, शील तरम जब पगत ना कीनी। हो अभिमान तेड पगरी, रहाओ अमर जान संची ए काया। ओ लिखिया का की जगरी, जिन्हें निवाज साज हम किए। किसे विसार अवर लगरी, संगत तोए साध नहीं कहियो। शरण परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए गिनती सुनियो। मत पालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार।

आधारी। क्रम से पाए पवे तेज तारी, आसन पवन दूर कर बवरे, छोड़ कपट नित हर पद बवरे। राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी, कह कबीर के सो जग जोगी। बिलावल इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत ना उपजे जन को, जन कहा करे बेचारे। राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया, त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी, किस माया को दृढ़ कर राखो, बांधे आप बचनी। क्या थे की क्या लेवा दई, परपंच झूठ घुमाना, कह कबीर के अंत बिगूते, आया काल निदाना। बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप, परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप। रे मन हर पज प्रम तजो, जग जीवन राम रहाओ। आवत कछु न दिसे न दिसे जात, जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात। लुखिया कर माया तजी, सुख सहज विचार, कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार। बिलावल जन्म मरण का प्रम गया, गोविंद लिव लागी, जीवक सुन समान्या गुर साची जागी। रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई, कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई। तृप्ति संग मैं पेखिया, कट हूँ कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना। बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नौ निज ता कह सहज, सहज जस बोले देव। रहाओ तब ए मत जो सब मैं पेख है, कुटिल गांठ जब खोले देव। बारंबार माया ते अटके, ले नर जा मन को ले देव। जे ओ जाए तही सुख पावे, माया तास न चोले देव। कह कबीर मेरा मन।

रविदास भगत की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, हस्त दशा सिद्ध करता।

दे महला चौथा कर पहला। जी मन चित आस रखें हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीवर तै प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाई। हर किसकी आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाई। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब व्यर्थी जाय रहा जो दिसे माया मोह कुटा।

वसाए। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छड़ाए। जे तुझ आस

मैं झूठ दिल सब जाए मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब खाए पाए आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराए कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए जन नानक की आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए गोंड महला चौथा ऐसा हर सेविय नित त्याय जो खुन में किलेक सब करे बिनासा जी हर त्याग अवर की

आयु मिला सा। जित दिन उनका स्वाव हुए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना चुका सा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुल उपकरे दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो, तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो, इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर, सांत शीतल मन अपना। जैसे सतत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया, मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछान राम रस पावो, ओ उत्तम संत पयो बद बदना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। इक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे, नित बसे हृदय हरि मोहे चरना।

हर अविनाशी सदा फिर निर्चल तुस मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुरबचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए ज्यो रंग कुसुम्भ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

रही है। सो ऐसा हर शेर सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साक है। ता मेरे मन कायत करी है रहाओ। हर परपंच किया सब करते है, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपुर है हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत दिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर तब जाने। मेरे मन अंतर की पीर।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजाओ, हर दर्शन सा

परलो करता, व्यापत करता, अलिप्तो करता, वक्तो करता, बूजत करता, आवत करता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की म्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़ अवायले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जायले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े कुटुम्बायले, ज्यो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चायले, जैसे मीन रसन साध बिनस्यो।

आज बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभु तज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुर ते सुजय निरंजन देव रहाओ। जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ तत पर लो निमख मझार। जा की गत नित कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा के आए। आए ना जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडार, सगल कथा देवे आधार। सतपुरुष जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमख जस गाओ। बाल सखाई पगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। कौन महला पंजवा, नाम संग सीनो व्यवहार। नामो ही इस मन का आधार, नामो ही कित कीनी ओट। नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम। मन का इष्ट गुरसंग ध्यान रहाओ। नाम हमारे जी की रास, नामो संगी जत कत जात। नामो ही मन लागा मीठा, जल थल सब में नामो गीता। नामे दरगे मुख उजले, नामे सगले कुल उदरे। नाम हमारे कार्य सीध, नाम संग इहो

सगल पूछे को कर दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट गत कट है सहाय, रहाओ रंक राव जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगप पहे लाल, जग करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गौण मैला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पौनस है, जाके कीरत निर्मल सार, जाकी रेन बाँछ है संसार, कोट पतित जाके संग उधार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुर के शब्द मंत्र मनमान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहा, पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्द मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाए, गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा

पुरख भगवान, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बोहित तारे पव पार, गुरु सेवा जमते छुटकार, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु पूरा पाये वड पागी, गुरु की सेवा दुख न लागी, गुरु का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सोए।

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम तन।

सहाय राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भय जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तै पार उतारे सबते ऊच राम पर गास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का मैल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पाते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम लूट ले सात पत सोवे सात जना पग मल मल तोवे पंच पूत जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार दिन भक्ति सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर से उतरे पारे जन्म मरण सब मिटि उपाद प्रभु क्यों लागी सह समाद सांखनंतर एको स्वामी सगल कटा का

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा, गुर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इतंते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो।

सुवाओ पज अभिमान जान प्रभ संग साद प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मन तन निर्मल हो।

ओहो दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम गौण महला पंजवा रूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न पय वडपाग आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ।

साध संग जपिए हर नाम, सागर पर गोहित प्रभ चरण, अंतर्जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंचदूत पागे विकराल, जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार, गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपा

कोई नाही, काट पट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पतित पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिय भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांसित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरथ दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार। बड़पागी पाइए पुरख अपार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, किसको पोए ना सके जमकाल। जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछाण। हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद। सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूरन मंत। हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार। हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा। गौण महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण। सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंथ। मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरणाई पूरन नाथ। जंत अपने को दी जय हाथ। रहाओ सिमरत।

कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिगारो, संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल, सोई संत जे पा

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ नारायण।

गायण भक्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा। जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पाए, सगल खान निंदक से गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जाकी शरण, निंदक मार पाए सब तरण, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक त्याए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले, गौंड नरु मरे नर काम ना आवे।

कालो सात हत ना तोड़े तरे ध्यान वहां कह दे बसे भगवान क्या अपराध संत है कीना बांध पोत कुंचर को दीना कुंचर पोत ले ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद गौंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे हो ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी ना इस पिंड ना रक्तूराती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीव ना मरता देख इस मरते को जे को रोवे जो रोवे सोई पत सोवे गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर हो राम की अंश जस कागद पर मिटे न मंस गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़ गोकाल एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई रहाओ सुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता लड़की लड़कन खैबो ना है मुंडिया अंदिन ताते जाहे एक दो मंदर एक दो बात हमको साथर उनको खात मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारे का

शंख को बिख बिख से संसार कर सीगार बह पकियारी संत की ठिठकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिस का बोझ

पग नेवर छनक छन हरी, जो लग प्राण तऊ लग संगे, नाए ता चली बेग उठ नंगे। सुहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रख किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है छेदे। सुहागन उर्वार ना पार, पांच नारद कै संग विद्वार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ। जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये, साधु बिन कैसे अवगत जाये। जैसे माँ पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई, कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अतरूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूछे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम।

सोडें अन्न करें पाखंड ना सोहागन ना ओरंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खावे वटका सारी अन्न बिना न होए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जान्या तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गौंड बाणी नाम देव जी की कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद असुमेद जगने तुला पुरख दाने प्राग इसनाने तो न पुजे हर कीर्तनामा अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ गया पिंड परता बनारस अख बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अछता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पव सिद्धं गौंड

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुम

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नी

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड। जे ओ अक्षर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सुरा पूजावे।

साध का निंदक कैसे परे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल फेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाद बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

जाना अभी कभी किछु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कभू जियरा ऊब चरक है कभू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक।

कहे नर हरि। जीवन तलब निवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जा पीतर कब पीतर बसिया, बार काहे नाही, तिनकी सार कहे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे मेरे आपे दूर, आपे सर्व रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तैरिया समाए। अंतर सहसा बार माया, नैन लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेंगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आयत है। किन बिद सागर तरिए, जीवतियां नह मरिए रहाओ। दुख दरवाजा रो रखवाला, आशा अंदेशा दे।

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सागर तरी है जीवतियां क्यों मरी है, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोग सुने, पपचोली मंगल कहताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली, करते बार ना लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे, सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा तामन सेव करे,

पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संग मिलाए जीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए राम कली मेला पहला हम दौलत बेड़ी पाप पड़ी है पवन लगे मत जाए सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दे आए गुर पार तारण हारिया देव भगत पूरन अविनाशी हों तुझको बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर्जंगम एक सिद्ध जिन त्याया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा राम कली मेला पहला सुरती सुर कर लाये एक कन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख तेन सदीवा बले

प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवै तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक तिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सह किया गल्ला दर किया।

कौन बुझे बिद जाने, खुद खुद चलत आप कर चीने, आपे तक पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहाओ। दिन में रैन रैन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित और न जाने, गुरबिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में ज्योत ज्योत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला पहला। जहाँ हर प्रभु कृपा तारी, ताहो में विच्यो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी विचारी। सो हर जन हर प्रभु पावे, एन इस भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे। रहाओ कुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आग पुरख हर पाया। सब नाग देद गुरबानी, मन राता सारंग पानी, तें तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे। जह आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला। छादन पोजन मांगत पागे, खुदिया दुष्ट जले दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी, गुरमत पत खोई, गुरमत परत पावे।

गडिया दिहतारी राम कला निभे पत सारी तर टूटी गाडो सिर पार लकड़ी दिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोता बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

तीजा कर पहला। सत युग सच पह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सत युग धर्म तैर है चार, गुरमुख बूझे को भी चार। युग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई रहाओ। त्रेता इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम दोए।

राम कली महला चौथा। जे वड पाग होवे वड नेरे, जन मिलदियां तिल न लाईए, हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित न लाईए, राम मोको हर जन कारे लाईए, हौ पानी पखा पीसो संत आ गए, पग मल मल तूर मुख लाईए, रहाओ हर जन वडे वडे वड ऊचे, जो सतगुर मेल मिलाईए, सतगुर जेवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख त्याईए, सतगुर शरण परे तिन पाया, ये ठाकुर लाज रखाईए, इस अपने स्वाए आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाध लगाईए, बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग भिखु मुख लाईए, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराईए। राम करी महला चौथा। सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर दिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सखाया, रहाओ मेरे इच्छिन प्राण न रहे बिन प्रीतम, दिन देखे मरे मेरी माया, तन तन वड पाग गुर सरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया, नाम हीन फिरे से नकते, तिन कस कस नक वडाया, मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा। सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उधारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम समारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड पाग हमारे, रहाओ कोट कोट ते किस त्यावे, तांका अंत न पावे पारे, हृदय काम कामनी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे, हर जस जप जप वडा वडेरा, गुरमुख रखो उरदारे, जे वड पाग होवे ता जपिए, हर पौजल पार उतारे, हर जन निकट विकट हर जन है, हर रास है कंठ जन तारे, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारिक हर प्रत पारे, राग राम।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई।

तो दर्जे सुख पाओ संतो ऐसी कथो कहानी। सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी। रहाओ परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई। सतगुर मिलो नवे निड पावो इन विद तत्व बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिवलावो।

तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा। आवत हरख ना जावत दुखा, न व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतरी सगल बेगनी। ए विद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी। रहाओ सुर्ग पवित्रा।

निवासा जय अवगत नाथ अगम तनि तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हों त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस

पुरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माथे वजे बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिहवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

ओढ़ नील, कोई सुपेद, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाँछे पुष्प, कोई सुरजिंदू, कहो नानक जिन

पाए खिंचया सूत आई खाए चो में एक मत है किया तें बिखरे थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वाजे सुन जोगी कै मन मीठी लागे रहाओ दूजा राम कली मैला पंजवा आगा करके ला।

जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई। रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, त्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दीसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, पौसोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले बीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लकबेरा, तन मन जियो पिंड देसा जिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल तिवारा मेल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा, राम करी महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सब बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ मैं माजा की जहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप, लाल रतन किस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप।

पीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई करतार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की केतक बरन।

संत जनी परदास पया पूरे गुरबतनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन ही बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच शब्द तै पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग नहीं।

रास संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मोहे कबू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास।

तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भिखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे, रहाओ दिन हर सगल ने

कर कर खाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान नान।

पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो या नाराच प्रत पारे नित सार समारे अंत की बार ऊठ सिधारे नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद पदन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ।

पंजवा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते क्यों का ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वडियाई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

ता छूटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद बिचारा बिन हर

समझवा संत के संग राम रंग केल आगे जम स्यो हुए न मेल अहंग बुद्ध का कया विनाश दुर्मत हो सगली नाश राम नाम गुण गाए पंडित कर्म कांड अहंकार।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

रैन दिनस जपो हर नाओ आगे दरगे पावो थाओ सदा आनंद न होवी सोग कभू ना व्यापे हो मैं रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा।

करत तें हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख।

परमेश्वर स्वामी काटकट दाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। रामकली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किछ कह न जाई, साच सच अलख।

था लोक ठाकुर प्रभु तिल टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर सरन मन तन हर ओही त्याया अनंत।

बात नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुण गोविंद रविया दिन राती, साध संग

ईंधन ते बैसंतर पागे, माटी को जल बैद त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

आई रहाओ। दर्शन पेखत हुए निहाल, जहाँ की तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के।

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को भिखियन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

वर्त तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

जिन जपिया तिन ही सुख पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हठ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल।

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

ज्योति सह सब सह मया आद पुर अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय ले पार पया मुए को रो में किसे सुनावे पैसा अगर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एहो चाख्या राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरमुख समकर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पहला जप सत संयम सात दृढ़ाया सात शब्द रस लीना मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना एन सरह एक लिव लागी साचे देख पतीना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका हे सतगुर देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक से दीपक प्रगासिया

चारी सब द्रवे आसन कर आजा अगल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

शोध कर पाव सागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुण दाता हों मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते एहा पलत निरारी गुरमुख योग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख योग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन

जोगी जे कुटुंब छोड पर पवन करें, गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन पेख करे जोगी रोग न जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग दिखम है जो

कहे नानक मुक्त होवे जोगी। साथी रहे समाए राम कली महला तीजा। भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई। संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध उच्चों जाई। आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई। जिसते उपजे तिसते बिनसे अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई। सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पा।

नाम नमन निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चित अदुष्ट लगाई।

नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पत पाई राम कली मेला तीजा। हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर दिन सब कुछ मेला संतो, क्या हो पूज कराई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाना मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्म

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु सबदी खाए पाए पूजा करें पर दुध नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाए पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो कूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछ

नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी निर शब्दे मैल उतारी संतो

कृपा तारी एक पेक करे सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अनदिन भगत करे दिन राती राम नाम उधारी अनदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन भगत ना हुई।

माँ तुम्हारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जाय मिलिए राम मुरारी अंग दिन जागत रहे दिन राती

एक नाम वस्या कट अंतर पूरे की वड्याई रहाओ। आपे करता आपे पुगता देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो कर रहया और न करना जाई। आपे साजे श्रेष्ठ उपाय सिर सिर तंदे लाई, किसे सिरे वो तास पावो सब गुर मेल मिलाई। अपना आप आप उपाय अलख ना लखना जाई, आपे मार्ग वाले

तो जन सूझे जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्वथा।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे वडिया।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नाम यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले जोरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार

ठाकर को रख लियो चीता। जिन दिया तुझ पवन अमोला, जिन दिया तुझ नीर निर्मोला, जिन दिया तुझ पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन सर।

नानक दास संग पातर करया राम कली मैला पंजवा काहू बिहावे रंग रस रूप काहू बिहावे माए बाप पूत काहू बिहावे राज मिलख वा पारा संत बिहावे हर नाम आधारा।

आए ऐसे राखन हार दयाल। जब तक देखो तुम प्रतपाल रहा हो जल पीवत ज्यों सुखा मितंत तन बिज सह गृह आवत संत लोभी का तन प्राण आधार क्यों हर जन हर हर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए क्यों हर जन राखे

ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबुन कापर ऊजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तय

अष्टपदी एकोंकार सतगुरु प्रसाद दर्शन तेतक पाप सब नाशे हर सो देह मिलाई मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंत हो सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत पूर मुख लाए।

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करके प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी। राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु ता पाया सह सोती मन वदियां वादाया राग रतन परवार परियां सबद गावणियां आईयां।

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया।

अंत न पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा की सच्चा मन वसाया, जी जन सब तुद उपाय एक वेख प्रसन्न आया, लब लोभ अहंकार चूका।

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद तृष्णा बहुत नाही बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समान।

कर्म कमाए। सहस जियो मलिन है कुछ संगम तोता जाए। मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए। कह नानक गुरु प्रसाद सहज उपजे तू सहसा उजाए। जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले कुन्नी जन्म जुए हारिया। ए कृष्णा वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया पूरे लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमानी। जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु से की सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले। गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले। आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जो को गुर के दो मुख होवे।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो हे सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आप वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन का हिरलया माया बोलन पहरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा।

सब रतन है निराजित गड़ाओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपके हुकुम वर्ताए आप वेख है गुरमुख किस बुझाए तोड़े बंधन हो वे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख किसनो आप करे सो हो वे एक कस्यो लिवलाए कहे नानक आप करता आपके हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तैसार न जाने सत्यसार न जानी गुरु बाजो सत्यसार न जानी तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे।

जे अगन ने आहार पहुंचावे उसनों क्यों पोए न सकी जिसनों अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए कह नानक एवट दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विच माया पाया हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए मूल न पाया जाए किसे वित्तों रहे लोक विललाए ऐसा सतगुरु जे मिले किसनों सिर सौंपिए विच्चों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मनवन जारा हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तातू जग में आया हर जोत रखी तुद विच तातू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया।

कैसा तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीरा जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाना आओ मैं पास जियो। हर पाना गुर पाया मेरा, हर प्रभ करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ पाना पावे आना।

0: गुर जाए हर प्रभु पास जियो।
1: सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

सतगुरु परतक होंदे बहराज आप टिकाया सब सिख बंदक पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो।

साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा, जानियड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा, नैन अलोया कट कट सोया, अत अमृत प्रिय गूड़ा, नाल हो वंदा लेना सकंदा, स्वाव न जाने मूड़ा।

अरहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याय सब किछ पाय मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिय कहो नानक कर प्रभ मेरे कै।

उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसें दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिये। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक पंडार।

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमख मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते परगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

सतगुर तुम सेव सखी मन चिंदियड़ा फल पावो। राम कली मैला पंजवा रुत्ति श्लोक इको अंकार सतगुरु प्रसाद कर बंदन प्रभ पार ब्रह्म बाछो साधे तूर आप निवार हर हर पजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन पैहरण सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो।

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रय रंग जागे नै छिद्र लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर

बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब मिल।

0: आए हरकंत जियो, ग्रहलाल आए मनती आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छपुनी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया,
1: हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

अफरेओ तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब

आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहूणा मुक्त किव होई विण नाम है विरोध शरीर क्यों ना मिले काटे मन पीर।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए, गुणदाता विरला संसार, साची करणी गुर विचार, अगम अगोचर

है सोताओ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कह न जाई, खोजत खोजत अमृत।

लिविलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख।

वार वर एक समाल, गुरुमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरुमुख गावे गुरुमुख बोले, गुरुमुख तोल तुलावे तोले, गुरुमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरुमुख नाद वेद विचार, गुरुमुख मज्जन चज आचार, गुरुमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छी जय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखार साउ सदाए संच तन दुबदा होए कुआर सचियारी सच संचिया।

खप खप मोए बिसंख खसम पचाने आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जा पै सदा।

सरत्याय संपै पूर्व लिखे की पाये संपै कारण चातर चोर संपै साथ ना चाले होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कने करथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाये।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द ना चीने सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी है।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ। क्या पविये सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी हूं संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा विचारो। आप

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई है सार नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

आए। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहीं है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाये लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचय वेद विचारी, गुरमुख परचय तरिय तारी, गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकत कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिये अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिस में ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवित नरवित पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार। गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए। गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पति आए। गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान। गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

वै कट कट तेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तार मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन वन जारा नानक सहजे सच वापारा गुरमुख बांध्यो सेत विदाते।

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहचान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हाँ मैं विच्चों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल संगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा।

पत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग म सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विदाता, सुनो सुन कहे सब कोई।

व्यापार नानक मनमुख ना बुझै गवार कबुद मिटे गुर शब्द विचार सतगुर पेटे मोख द्वार सत ना कीने मनमुख जल जाए दुर्मत विचर चो

पार परे सच भाए, सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिये पवजल संसारो, त्रैसत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरुमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में वसे, विचो परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाए,

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हौ मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुरु ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अरा दिया अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म

पियो आत्म सुख तारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसे इहो पवना कहां बसे सो

मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस्कार सूर समावे, गुरुमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे, इव मन ने चल हृदय वसियले, गुरुमुख मूल पछाण रहे, नाभि पवन कर आसन बैसे, गुरुमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन जोत तो शब्द लहे, खावे दुख पूख साच।

नानक आखे सच सुभाखे, सच रुपए रंग कबहू न जावे। जा एहो हिरदा दे न होती तो मन कैठे रहता, ना बिकमल अस्तंभ न हो तो ता पवन कवन कर कहता। रूप न हो तो रेख न काई ता शब्द कहा लिवलाई, रकत बिंद की

हार, गुरमुख मन जीता हूँ मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार विदार, गुरमुख दरगह न आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए सो जाने, नानक गुरमुख शब्द पछाने, शब्द का निबेड़ा सुन तू और दू

परम पुलाई सब जग फिरी, फावी होई पाल सो सब सांत न दे रही, क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याय अंतर रखिए उधार नानक।

मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौती राम की चूठा टिके न कोए, राम कसौती सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानई हो मैं छड़े न कोए। गुर प्रसादी हो मैं चुटे जीवन मुक्त सो होए।

पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाई जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे नानक सो तपा मुख अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन उप

सब साजियन रविया सब वन त्रिण सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब देही सोजी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नाखियन जिनके चित में परम जिस दै दिते नानका ते हो जेहा तरम अभय निरंजन परम पद ताका पूखा होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सब अपना निज कर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तकत सच्चा

सच्चाई सब समाय पौड़ी। आप अलिपत पदार हैं होर तंदै सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है।

मनमुख आप खुआयन माया मोह नित कर सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंप फिरे ना सत मूंड मुडाई केसी ना सत पड़िया देश फिरे ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तछावे दुख सहे ना सत हस्ती।

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब द्रवे, सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत मैं रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औ हठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध

आत्मराम पचाता बार मूल न खोजी है कर्माए विदाता मन मुखार मंदर की सार न जानने तिन्नी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा।

0: होशी आए तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे कुछ कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पग तीरा पे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवा पे सब किच हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान देन्द्र रोआया परशुराम रोवे कर आया अजय सो रोवे पीछा खाए ऐसी दरगह मिले सजाए।

कोई पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गुप्त रखी जय। बजर कपाट ना खुलने, गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे, गुर शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना, कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा, जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा, अंधे कह राह दसे, अंधा होए सुजाए।

कोय जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जानिया सच करती सा सब किस सचो

हाल हले मी हाली चित चेता वत्तर वक्त संजोग नाव बीज बसीस बोहल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है मच तप कढोले अंतर प्रगास कट चानना हर लद्दा तोले आपे परम पुलाइंदा किसके न जाई श्लोक महला दूजा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंग न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है,

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजो।

तिसे मिले संत खाट, मस्तक जिसा पाग। श्लोक महला पंजवा, हरनाथी को सच वैन सुनाई, जो तो कर

जिस दा करता मित्र समका सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

बहुतारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूढ़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठग ऐसे ती ठग रल आया, साप दे इको जेहा, सतगुर सराफ नगरी विच दो कड्डे, ता उगड़ आया लोहा, बहुतेरी थाई।

आपके वैद आप नारायण हैं। ए वैद जी का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस खायण। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मेला पंजवा हुकम।

खीलवंत प्रधान हृदय सचाविया, अंतर बाहर एक इकरी ताविया, मन दर्शन की प्यास चरण दासाविया, शोभा बनी सिगार खसम जा राविया।

सेवा पौड़ी, जिसके मस्त कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

शुद्ध कर। मान महता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा। छतरे बाजार सोहन विच व्यापारिये, वखर हिक अपा

सहकाया फेर पलटी है। चुल्ले सो छप निरंजनी मल तख्त बैठा गुरहट्टी है। करे जे गुर फरमाया सिल जोग अलूनी चटी है। लंगर चले गुर शब्द हर कोट नावी खटी है। खर्चे दित खसम दी आखें दी खैर दबटी है। हो वै सुख

मुद्रा मदद सहज तुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुच संजम, रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, उहो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मल, ए रस मनुआ।

तेरी, अब तब जब तब तू ही हम तो है प्रसाद सुखी सद ही रहाओ। तोरे परोसे मगहर बस्यो मेरे तन की तप्त बुझाई, पहले दर्शन मगहर पायो फुनका सी बसे आई।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे हुए सुरन में जूझे बिन दागे पग जाई, साधु हुए सो भगत पछाने।

जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन।

हाथ कर्म कर उदर परे चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण में काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जल हर सोखिया।

रहे निरालम तारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, कर्म दया कर बारी। कवन काज सीजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवन इद तरन तारन, चिंता मन इक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन इह प्रसंग न टूटे। जिह कर कथा होत हर संतन इक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु

दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बिख का डीले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रत कंठ तो

मंदर सोवे पटंबर तान सेज सुखाली बिरसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन गाये एहो सिमरन सतगुर ते पाये सदा सदा सिमर दिन रात।

बेदार जागत मुसीहत हौरे पाई, निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई। रहाओ नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार, नालियेर फल सेबर पाका मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कमीर कुल।

वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजावोगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जीव जंत ना सतावोगो।

करे तंग जो हिवाले गारे राम नाम सर तौ न पूजे असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित कीजे आत्म जो निर्माइल कीजे आप बराबर कंचन दीजे राम नाम सर तौ न पूजे मने न कीजे रोष जमे न दीजे दोष निर्मल निर्वाण पद चीन लीजे जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमर।

सतगुरु प्रसाद इरा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तिथाई संतो

एतै पास परम गुरुदेव दशम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतर थाती जागत रहे।

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास खरे। रहाओ हर हर नाम जपें आराधें, सेवक पाल खरे। किल बिख दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाद नगर में, एक खिन पल दूर करे। वड पागी हर नाम त्यावे, हर के पगत हरे। इनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तेरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किलबिक पाप नाम हर काटे जीव खेत कृसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने

पावे। जन नानक के प्रभु वद में नट महला चौथा, मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभधारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर रूप।

मिल सल ले सलल समणे जो प्रभु किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारिक तौरिद उस्तत तारो हम करे प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर देवो कर किरपणे।

हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसी थी हम हर देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपसे की खबर गुर पाई मन तन अनदो अनद भये हर

हर अकप कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल।

अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर पग पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भावे मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हों मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पय नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधार्यो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहि विसार्यो रहाओ बरन चेन नहि किछु पेख्यो दास का कुल न विचार्यो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवार्यो महाविखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतार्यो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहार्यो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते स्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दास ने दास कहत है।

गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुरु निस्तारे। विवेक गुरु गुरु समदर्शी, किस मिलिए शंख उतारे। सतगुर मिलिए परम पद पाया, हौ सतगुर के बलिहारे। पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे। हलत पलत दुखदाई होवे, जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवे दिन आल जाल समाले, दिख माया के विस्थारे। आई रैन पया सुपनंतर, दिख सुपने भी दुख सारे। कल्लर खेत लै कूड़ जम

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाय, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई, परसुआ गणक उधारे, परस न परस पै कुब जाको, ले बैकुंठ सिधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बुलारे, मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी, जम कंकर मार बिदारे।

किचना समारे। जब कर मंदर आग लगानी कब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग देह सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मिर्ग।

कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभ को जन अंतर हृद लोचे प्रभ जन के सांस निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे।

संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब फोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखारे।

रिद अंकर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुरु गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुरु शब्द विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगमा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

हर हार हर पुर धारियो, जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा। जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संगत मिल हर साधे आया, गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ। वड पागी गुरु दर्शन पाया, गुरु मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बात।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो, प्रभु मस्त के तुरली किया, गुरुमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजया, हर मिलियो मंगल गायो, पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो।

हर पव अगम ठाकुर गुरु चरण मन में लायो हर राम नाम में रहो लागो जन नानक नाम समायो माली गौरा मेला चौथा मेरा मन राम नाम रस लागा कमल प्रगाश कया गुरु पाया हर जप्यो क्रम तो पागा रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा मन सोयो गुरमत जागा किलबित खीन पै शांत आई हर उर्धार्यो वड पागा मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ जो कुसुम चार दिन चागा खिन में बिनस जाए पर पापे दंड धर्म राय का लागा सत संगत प्रीत साध अत गूड़ी जो रंग मजीठ बहु लागा काया का पर चीर बहु फारे हर रंग ना लहे।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन क्यूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जान हूँ हर मात पिता प्रताला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल विख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल विख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीश की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुर है गुर बचन बिकानो हटहाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पाव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पूख तिखाट। छक्का पहला माली गौड़ा में।

हवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को न मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचत।

जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंचो मूचो बहु अपार, सिमरत नानक तरे।

नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आज्ञा मने मीठ मेरा कमल बिकसे संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मने मंत संत प्रसाद मेरे

तन तन बन खंड बिंद्रावना, जय खेले श्री नारायणा, बेन बजावे गोदन चरे, नामे का स्वामी अनद करे। मेरो बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए, रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले, दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले, गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले, ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आइयले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गवाई मूर

कोई, किछ खा जाए किछ तर जाए, जे बाहुर दुनिया आए, सज काया पट हंडाए, फुरमाइश बहुत चलाए, कर सेज सुखाए।

रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे मारू महला पहला श्लोक पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना कर।

अवर पला संसार मारू महला पहला एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तारे रहाओ ना एहो तन जले ना

इस तन बिन कहो किने परम गत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पैला, सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय, मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे, मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ, अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्राप तज छोड़ तो अप्यो पीजे, मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे, पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे, मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे, मारू मैला पैला, माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत, बोयत जल सिर तरट के, साचा वखर जित, मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत, बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व ज्योत जग जीवना, सिर सिर साचा लेख रहाओ, ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे पे खारी, माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी, जंगम जोत जति सन्यासी गुरुपूरे विचारी, बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी, नितनया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान, अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ न मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती, गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती, जा तो पीतर महल बुलावे पूछो बात ने।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरु बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पहला कर पंजवा।

मन अभिमाना तास तास तरम राय जप्त है। तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथिय निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ते मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर के शब्द ते आए तू सच लगी प्यार रहाओ। एथे नावो पुल्या फिर हाथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा। पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाए रहाओ। ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो न थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए। भगत खजाना बख्शियो नु गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा। सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुर पाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा। मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा साला ही है तिस जेवड़ अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराद तू अन दिन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख एको जानिए जा सतगुरु देव।

सतगुरु प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुरु बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदामे मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम किरतारत गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदय त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोर बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरियो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जपियो ते पाए। गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया। तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

हर प्रभु पास मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास मन प्यारिया मित्रा मैं हर हर नाम तन रास गुरपुरे नाम दृढ़ाया हर तीरक हर साबास राव हर हर आप मिलाए गुर मैं दसे हर तन रास बिन गुर प्रेम ना लब्बई जन वेखो मन निर्जास हर गुर विच आप रखिया हर मेले गुर साबास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास मन मुख भाग विहूणिया तिख मोहिया कंदी पास गुरदाता दातार है हौ मांगो दान गुर पास चिरी विछुन्ना मेल प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत हर हृदय समाणी जप हर हर कथा वड पागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपुरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पानी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाओ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाई है अकथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पानी मेरे मन तन नाम आधार है।

सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समानी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन मुख

हर हृदय सदा सदा समाली, हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ दे तार अर देवा डर पै सिद साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू मैला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे बिदर दासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रम्यो बहु पांते अनक

ए विध खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

ठाकुर तिस्ते मुख नहीं मोरे हो, सहज आनंद रखियो गए पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा, सो घर नहीं जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले माने हो। पयो किरपाल ठाकुर सेवक को, सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया, जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा। खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई, श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई। अब मोह जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव। काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई। सुख शीतल सरदा सब पूरी, होए संत सहाई। पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई, निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिवलाई, मारू मैला पंजवा। जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने, बैरी संग रंग रस रचिया।

दुलारियो हस्त पाव चरे खिन पीतर अगन संग ले जा रहे हो मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो।

उतारियो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो। एहो नानक तत विचारियो, मारू महला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ, जा कै वस है सगल संसार, आपे आप आप निरंकार, नानक गयो।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाक होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या।

सूद वै सब एक है नाम तरानत। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानत। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ विकार पाथर गले बांधे। निंद पोट सिराए महासागर समुंद लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

आया था। अनुपव अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तै अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मंत्रिष्णा बूजी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक पर

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो प्रगास, काटी देरी पगे ते गुर की नी बंद खलास, आवन जान रहे हो कपत कलाहा बुझ गया, गुर श्री कल नाम दियो रहा।

मेरे सतगुरु से मर जन में गावारा, मेरे सतगुरु ही पत रास चीत आवे तब ही पत पूरी, बिसरत रलिए खाक रहाओ रूप रंग खुशियां मन पोगण, चेते छिद्र विकारा हर का नाम निधान।

जिन गुरु ने हर हर गाया, ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहार।

एक शंकर गादी गद है, एक सुखने दाम न छड है, राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक प्राण पिंज ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न

मात गर्भ में जिन प्रतपारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टपिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत इकेला जात इकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्तन।

अनेक दुख और बहुत सजाई, ताकि कीमत कह न जाए। प्रभु विसरत नरक में पाया, तह मात न बंद न मीत न जाया। जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी। प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया। प्रभु दयाल दुख दर्द बिदारण, जिस पारे तिस ही निस्तारण। अंधकूप के काडन हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा। साध रूप अपना तन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया। जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही। नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा, कत को डह काव।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इक नाम त्याई नानक दीन नाम मांगे जितिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अपारा।

अतल अथयो देवा मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता गुरजाने जिन मंता ताकि किस कह न जाए जा को नाम बढ़ाए लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो तिरखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो ने चल तिनका ठाणा गुर ते मैल पछाणा आन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूरन तृप्त अघाए सह समाज सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया मारू मैला पंजवा कर छेवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियान पा मिल साध त्याग गुमान और सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम राव दुख दीन ना पाओ व्यापे मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे से पुत्र मित्र विलास बनता टूटते एहने मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे राव देख छाया जैसे दिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बत्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपे तिसीद नवल नवतन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू मैला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षो अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कभु नहार मारू मैला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसे प्राप्त नाम के

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न से

हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे परहारे पूरद मुख मां गुबारे सास सास समाले सोई उठे खसम छड़ाए लया विच्चों गर्भे निकल आया खसम विसार दुनी चितलाया आवे जाए पुवाई जोनी रहन न कितनी खाए बया।

तुमरो प्रदान है। कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण

हर को नाम सदा सुखदाई, जहाँ को सिमर अजामल उद्रियो गणताहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में दाम नाम सुधि आई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत ना इन भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस में पाग्यो मारू अच्छा मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सच्ची रख बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्म

मनमुख तत न जाननी पशु माए समाना। औ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार, गुर कह सब दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार। गुरमति जग जीवन मन वसै।

होता पैसारा, साची संगत थान साचे, सच्चे करवारा, सच्चा पोजन पाओ साचे, सच नाम आधारा, सच्ची बाणी संतोखिया, सच्चा शब्द विचारा, रस भोगन पाप साइया, दुख सुख संगारा, मोटा नाव तराइए गल अवगुण पारा, मानस दात न होवई तू दाता सारा, अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा, गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा, नानक मेल न चूकई साचे वापारा, मारू मैला पहला बिख बोयथा लादिया दिया समुंद मंझार, कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार, वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल, बाबा जग पाथा मां जाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ, सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार, तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार, तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए, आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए, सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस, पूरब लिखिया पाए किसनो दीजे दोस, गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख, मागर मच्छ पाए कुंडी जाल बताए, गुरमत फाखा पाए फिर पछोताए, जम्मन मरण न सुजई कीर्तना मेटिया जाए, हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए, जरा जोई ना सकई सच रहे लिवलाए, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए, तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार, जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्द गवार, गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार, गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार, मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ, जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ, मारे राखे एक तू बीजो नाही खाओ, बाबा मैं कुचील काचो मत हीन, नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ, अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ, सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे, जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए, जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार, आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार,

पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता तू नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप।

नानक नाम ना विसरे, जो तिस पावे सो होग, मारू मैला पैला। साची कार कमावनी होर लालच बाद, एह मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। अंदिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है। पाने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की, साची सुरत सुहावनी मनमुख मत पी की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ पुर की, साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या। चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या, साचे कर साचे रखे गुरबचन सुवाख्या। मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी, साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद निगाड़ी। गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी, अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी। बिन साचे जियो जल बलों झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तर

मूठी बिन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला। मन मुख लहर कर तज विगूचे अवरा के कर हेरे गृह धर्म गवाए सतगुरु ना पेटे दुर्मत कूमन के रे दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले जय दिस्तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पीवे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पशुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विचों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग्रे तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उर्धारी नाम बिना नहीं छूटत नानक साची तरकू तारी मारू मैला पहला मात पिता संयोग उपाए रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरियो पार अपार तरे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास समार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे तरन पलाव करे नहीं पावे इत उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूण कुटंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरुदो नैनो नीर तरे
चरण रहे कर कंपन लागे, साकत राम ना हृदय हरे। सुरत गई काली हूँ तोले, किसे न पावे रखियो करे। विसरत नाम ऐसे दुख लागे, जम मार समारे नरक खरे। पूरब जन्म को लेख न मिटे, जन्म मरे का को दोष तरे। दिन गुरबाद जीवन होर मरना, दिन गुर सबदे जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस भोगण, फोकट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूल खोयो, फिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे, जां को हर प्रभ नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरो गुर बचन समारो, संगत हर जन पाव करे। हर जन गुर प्रदान द्वारे, नानक तिन जन की रे।

दोहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगण मुठड़ी दिन फिर चूर मराओ, तेयड़े फिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास, लेप निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, फिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

सो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सके सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुची निस देहो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रवनाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

एक जोत दो नाओ। मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए। सतगुर कह पाने मन

जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विच्चों दुरमत होवे। रंग स्यों नितरन

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए अपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कलकारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंद कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नामे को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत नाम।

कार्तिजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो किरपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर

किछ ना कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार दी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार दुख दर्द कलेश बिन सै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा।

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो।

हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासै, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै, दुर्मत दुख सजावना। दर्शन भेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नौ निद रिद सिद्ध पाई, जो तुम रह मन पावना। संत बिना मैं थाओ न कोई, हवर न सूजे जावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्ये हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन। हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्तीवना। पहनना रख पत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना। पोगना मन मदे हर रस, संत संगत में लीवना। बिन तागे बिन सुई आनी, मन हर पगति संग सीवना। मात्या हर रस में राते, तिस बहुड़ न कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्व निधाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता। दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता, सोई सुहेला पालिए। ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही में जो रह अलिप्ता, तिस जन की पूरन कालिए। जागत सूता परम विगूता, बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता। साध संग टूटे हो बंधन, एको एक निहालिए। कर्म करे ता बंदा, ने करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने। कट कट राम हे आलिए। संसार में सहसा व्यापे, अकत कथा अगोचर नहीं जापे। जिसे बुझाए सोई बूझे, वो बालक वांगी पालिए। छोड़ बह तो छूटे नाहीं, जो संचे तो पौ मन माही। इस ही में जिसकी पत राख है, तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होय मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना। नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले। ज्यो ज्यो औद विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे। अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे। लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा। माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता। तिल पीड़े ज्यो कानिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई। वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे।

खाल कथावो पुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया मौला खेल करे सब आपे इक कड्डे इक लहर व्यापे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेर करे ता खसम तिराई संता संगत नरक न पाई अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित वखानिया मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद साचा सच

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

सबद सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है, कोई न मेटे साचे लेख है, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आए है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने क्यों लूजे, जो तुद सेवे से तुद ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाई है, पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना कमाई, पर पुरतार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है।

पूंजी साथ सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है, जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखूं लिवलाई है, मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, दिन फिर नींद न पाई है, अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ वडाई है, काम क्रोध अंकार निवारे, सत्सर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे, मन सामन है समाई है, माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है, तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देखे, दुख दर्द शरीरों जाई है, निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल बिगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर खाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सबाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया, सच्चे ऊपर

नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है मारू मैला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे।

सच नाम सच्ची वडियाई सच है तखत वडाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे न दरगे सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सोजी बूझ न काई है। दया दुआ पर अद्धी होई गुरमुख विरला चीने कोई दोए पग धर्म तरे तरणी तर गुरमुख साच से।

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व दिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत तरी परमेश्वर, अवर न दूजा पाई है।

गुरमुख सुरत समाई है कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किछ साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है, भोजन साच मिले आघाई, नाम रतन साची।

परब न जाए। पच पच मोए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही। मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोय न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है। वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हठ कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीर्थ नावे अन्न न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच समावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता। जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक। आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे। बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा। गुर संगत ए बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। हर गुण गावे रसन रसेरे, पुस्तक करें पर हर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे। संगत कुल तारे साथ परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल। ओए रहे भगत लिवलाई है, बूजो हर जन सतगुर बाणी। इह जो बन साथ है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी। हर जप जप हृदय ते आई है, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा। कूड़ मारे काल उछाड़ा, साकत पूर पचे मन हो मैं। दोह मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पराई। पढ़ पढ़ दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो। आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरियाई। हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो। क्यों तरिये पवजल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिखेला। तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पढ़ पढ़ अगन सागर दे।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करनंदर, बिघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पावजल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सतसंगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबार है, ताड़ी लाई अपर अपार है, तुंदुकार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्योतिष पाणा तिवे चलाए, तिसे सरीत न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

सत दया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुरु मिले ता सोजी होई बिन गुरु बजर कपाट न फूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन सीजे देही राम न जपे अंत स्नेही नाम विसार चले मुँह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे बिन अब भगती बाद मरीजे सर अफसर की सार न जाने जम मारे क्या चारा है परवृत्ति नरवृत पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आँख न चले सच खरा सच आरा है साच बिना दर्श जे न कोई साच शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रवछा जय पौन पानी बैसंतर गाजय मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की ना है नाम विसार दोख दुख सही है हुकुम पया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे जो जल से बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की तै तैसो पाई है सतगुर बाजो मुक्त न होई किस बांदा ग्रस दीना है खंडे तार गली अथ पीड़ी लेखा ली जय तिल जो पीड़ी मात पिता कलत्र फुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त न की ना है मीत सके केते जग माही बिन गुर परमेश्वर कोई नाही गुर की सेवा मुक्त पराए।

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे, प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

कनेरे नरक पते अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अग्न बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कल्लर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुरु तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है सत गुरु तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुरु राखण हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतार।

थाकत माया को बहु पावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कई है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है, राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। हच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो। अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सत गुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत मिल काया कीनी, किस में राम रतन लैचीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सत गुरु शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनस निंदा करे अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके। बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए।

चाले बिखला दे चार बिकार आहे। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुर पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती। नानक राम नाम मत उत्तम, हर बख्शे पार उतारा है। मारू महला पहला, शरण परे गुरुदेव तुम्हारी। तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई। तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला। खट खट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवे चलावे। सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन। सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे लेवे आपे देवे। त्यो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खे

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चक्र करे विचारे आपे करता।

अच परास है, जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरुमुख सब सलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ति बाणी, सुन कहिए को अंत न जाने, जा को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, कृत पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख सुख ही ते

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रात सलामत।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मनसाचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है, और न कथने सिफ सजाई।

का कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे परवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएगा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएगा जेती है तेती तुद अंदर देखें आप बैठ बिज मंदर नानक साच कर।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाय पाणे सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, विन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपो सबद गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, किन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, सबद पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे सबद प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मेला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओपत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेस नहीं।

पुरख नहीं जात ना जन्मा ना को दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी योगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आंख बखाने दूजा आपे आप उपाय विगसै आपे कीमत पाएगा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएगा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएगा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना

नहीं आप्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता।

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। कौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे, दसवें वासा अलख अपार है। सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वडियाई। जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे शोभा पाएंदा। गर मह हाट पटन वापा।

भंडार है, सर्व कला ले आपे रहया, गुरमुख किसे बुझाएंदा, नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिरसते आएंदा, आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा, प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे, सच्चो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर हृदय मिलाए, गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा, हुकमे आया हुकम समाया, हुकमे दीसे जगत उपाया, हुकमे सुर्ग मच पयाला, हुकमे कला रहाएदा, हुकमे तरती तौल सिर पारंग, हुकमे पौन पानी गैनारंग, हुकमे शिव शक्ति करवासा, हुकमे खेल खिलाएदा, हुकमे आडाने आगासी, हुकमे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएंदा, हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणित अपारा, माने हुक्म सो दरगह पैजे, साथ मिलाए समाएंदा, हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएंदा, काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएंदा, सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएंदा, मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएंदा, कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अगन पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएंदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएंदा, सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन न पाएंदा, सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएंदा, सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा, सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सुर करते, विस्माद शब्द देखाएंदा, सुनो रात दिन सुदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा, साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा, सुनो सपत पताल उपाए, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परम

तो किया कमाएगा। राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया। जिसनो कृपा करे हर गुरुमुख, गुण चौथे मुक्त कराएगा। सुनो उपजे दस अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा। देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाएगा। गुरुमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई। जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएगा। पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा। बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएगा। उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले। रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे भाग मिलाएगा। इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा। आशा मनसा

यहाँ अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिस की छाया जिस बाप न माया ना तिस पैन ना प्राव कमाया ना तिस ओपत खपत पुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सब संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया त्रैवर्ताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत।

पाया, पंच तत् मिल के तनसिया, आत्म राम पाए सुखतिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रह निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गर महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाये गुरमत पायक, आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवे दिन राती, क्यों सात वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू मैला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुरु सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया, तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारे जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर स्थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसें पर

क्रोध लै गर्दन मारे हो मैं लोभ चुकाया सच्चे थान वसै निरंकारा आप पछाणे शब्द विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले न पौन उड़ावे योगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ आपे वाय सुनाया सौ बैरागा सहज समाता हो मैं त्यागी अनहद राता अंजन सार निरंजन जाने सर्व निरंजन राया दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी रोग कटे साथी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ पंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने आपे जाने आप पछाने सब किसका चोट सवाया आपे साव आपे वनजारा आपे परखे परखनहारा आपे कस कसवटी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रवतारी कट कट रव रहा बनवारी पुरख अतीत वसै ने केवल गुरु पुरख है पुरख मिलाया सब दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मेटे एक दिखाए आशा माए निरालम जोनी अकल निरंजन गाया हों मैं मेट शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत्संगत सच फल पाया मारू मैला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा मन हर जप पार लंगाया हो मैं ममता लोभ विनाशन नौ दर मुक्ते दसवें आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आप उपाया गुरमत ले वो हर लिव तरिये अकल गाये जम से क्या डरिये जत जत देखो तत तत तुम ही अवर ना दुतिया गाया सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जिते लग तरना अकत कट है देखे अपरंपर सुन गर्व ना जो नी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन पव जल जाए न तरिया एहो समुंद अथा मां बिक परिया रह अतीत गुरमतले ऊपर हर निरपो कह कर पाया झूठी जग हित की चतराई बिलम न लागे आवे जाई नाम विसार चले अभिमानी उपजे बिन खपाया उपजे बिन से बंधन बंदे हो मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये बिन गुर राम नाम क्यों त्याये गुरमत ले हो तरो पग जुतर मुक्त पहे सुख पाया गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पाहन तारे गुरमत ले हो परम पद पाये नानक गुर परम चुकाया गुरमत ले हो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मुरारी जम के साए काटे हर जप अकल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अगन निवार समाई मनमुख नाम जपो जग जीवन रिद अंतर अलख लखाया गुरमुख बूझे शब्द पति जय उस्तत निंदा किसकी की जय चीनो आप जपो जगदीशर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मंड खंड सो जानो गुरमुख बूझो शब्द पछाणो कट कट पोगे पोगन हारा रह अतीत सवाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा श्रवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया मारू मेला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ तज हो निचिंदा क्रम का संगल तोड़ निराला हर अंतर हर रस पाया नित दामन जो चमक चंदायन देखे एनस ज्योत निरंतर देखे आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुरे देखाया सतगुरु मिलो आपे प्रवतारे सत कर सूर दीपक गहनारे देख अदिश रहो लिव लागी सब त्रिभवन ब्रह्म सवाया अमृत रस पाए तृष्णा पाओ जाए अनपौ पद पावे आप गवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिय अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिय, अंतर की दुबदा अंतर जरिय, पंच बाण ले जम को मारे, गगनंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुरु है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुरु जाने, सो निरपौ गुरु शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बाहर सो प्रभु जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिह लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, जीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तंते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गै जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गै गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सतगुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सरनावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवो संत न की जय, आशा माहे निराश रही जय, संसा दुख बिना सन सेवो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडी आए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया, वाचह पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करे विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड कीने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करे उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुरु परम न जाया, न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पाखंड तरम प्रीत नहीं।

संसारा जल जल खपे बहुत विकारा मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुरु बूझ बुझाई है सतगुरु सेवन सेवड पागी साचे नाम सदा लिव लागी अंतर नाम रविया ने केवल कृष्णा शब्द बुझाई है सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरले किने पछाणी सच्चे शब्द रते बैरागी आवन जान रहाई है शब्द बुझे सो मैल चुकाए निर्मल नाम वसे मन आए सतगुरु अपना सद ही सेवे हो मैं विच्चों जाई है गुर ते बूझे तांदर सूझे नाम विहूणा कत लूझे सतगुरु सेवे की वड्याई कृष्णा फूख गवाई है आपे आप मिले ता बूझे ज्ञान विहूणा किछु न सूझे गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द वजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

नानक दास कह बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वरतै सब सोई, गुरमुख गिरला बूझै कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आठ सुनाए, सबना रिजक समाए आपे, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौं मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुरबिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

मिल प्रीतम सुख होई है, मन मुक्तात दूजे है लागा, जन्मत की नाम वो अपागा, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, बिन गुरु मुक्त ना होई है, काया कुसुद हो में मल लाई।

अंगारे मर मर जम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक सब जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। हम मारे शब्द निवारे।

साचे ते पत होई हे। मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे। दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मनमुख निंदक पत

पाए सुबाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर है पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुंचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाणे दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है।

दरसा तै पत पाई है मारू महला तीजा जो आया सो सबको जासी दूजे पाए बांदा जम फासी सतगुरु राखे से जन उभरे साचे साथ समाई है आपे करता कर कर वेख है जिसनो नदर करे सोई जन लेख है गुरमुख ज्ञान किस सब किस सूज है अज्ञानी अंध कमाई है मन मुख सहसा बूझ न पाई मर मर जम में जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साथ समाई है संदे तावत मन पया मनूरा सिर हो वे कंचन पेटे गुरपूरा आपे बख्श ले सुख पाए पूरे शब्द मिलाई है दुर्मत चूठी बुरी बुरियार अवगणियारी अवगणियार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साव न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुर मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब लेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुरु बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे और धारे सतगुर सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे नह पाए बिन सतगुर सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चराए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिह चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता इक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पौ जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कहती रह सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हौ तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अम दिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा खत्म पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे ना करने जोगा
आपे करें करावे सो होएगा, आपे बस लें सुख पाए, सभी नाम निवासी है। तेव तन तरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वणज अपारा, सच तन जमया कोट ना आवे, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणया रे नो गुण की जय, आपे बस ले नाम दी जय, गुरमुख होवे सो पट पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई, गुर प्रसादी बूझे कोई, गुरमुख होवे सो तन पाए, सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोह सुध न काई, मनमुख अंधे किछु न सूझे, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते, अपना कर न समाले अंत विगूते, पर निंदा करें बहु चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख देव बुझाई, नानक नाम रते।

मन मुख ना बूझे फिरे आनी, जम काल कड़ी मोत निहाले, अंदिन आर जा छी जाए, अंतर लोभ करे नहीं बूझे, सिर ऊपर जम काल ना सूझे, ऐठे कमाना सो अग्गे आया, अंत काल क्या की जाए, जो सच लागे

गुर कै शब्द सदा जन सो है, नाम रसायन इव मन मोह है, माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमती हर नाम पी जय है, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाय साचे अमृत पी जय है, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किश आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जय है, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमती नाम ली जय है, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जय हे, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत सांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जय हे, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी, त्रैगुण बद्धक मुक्त निरारी, गुरमुख ज्ञान एको है जाता, अंदिन नाम रवि जय हे, वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आँख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पी जय हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई।

सच्चे सच्चा सक्र चाया निज कर वस्या तिथे मोह न माया सद ही साथ वस्या कट अंतर गुरमुख करनी सारी है सच्चा सौदा सचवा पारा ना तिथे परम ना दूजा पसारा सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे बूझे कोई चारी है सच्चे लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड़

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया। सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है। माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना। गुरमुख हो वै सो सच कमावे, साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई। गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे। ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया। बिन गुरु दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया। सच्चो सेवे सच प्यावे, सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी, आम दिन सुख सहज समाधि। हर हर करत्या मन निर्मल होवा, गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए। सतगुर राखे से जन उबरे, होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता। एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है। हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया। गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है। जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए। अंदर साचा मन तन साचा,

सुख पाया, डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया, अमृत फल तिन जन को लागे, जो बोले अमृत बात आहे, हम गुण नाही क्या बोले बोल, तू सबना देखे तोले तोल, ज्यो पावे त्यों राखे रहना, गुरमुख एको जाता है, जां तुद पाना ता सच्ची कारे लाए, अवगुण छोड़ गुण माए समाए, गुण में एको निर्मल साचा, गुर कह सबद पछाता है, जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत सब देखोई, एक स्ने प्रभ एक समाना, अपने रंग सदराता है, काया

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ये मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं तेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एक को

आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वर्त सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत परे पंडारा, आपे बसे शब्द विचारा, जो तुद भाव है सोई करते, सच्चे सो मन राता है, आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो, जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप।

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किलबिख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण काहे को दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मिले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पथरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे करा।

होई सबत सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहा है सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरुमुख नाम त्या

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रविया कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता शब्द मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख कर चै तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वरताया। गुरमुख हो वै सो अलिप्तो वरते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के पै की सार न जाने। तै बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्द नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख हो वै सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द

गुरमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत साहा है। गुरमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेन दे लाहा है। गुरमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे अन दिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है।

वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल बिकसे बुद्ध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

गुर कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसे कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तफे साला है, मेरे प्रभु साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभु तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है, से जन मिले

पूरे गुरते सो जी होई, हर रस पीने सदा ते आयन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुरमत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम

कहो मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सबद तुहाया, पंच सबद मिलवा जावाया।

सत्सेन सत्यो सच्चा। गुरुमुख सबक सुनाएदा, गुरुमुख हो वह सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए। गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएदा। गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार। पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा। गुरुमुख हो वह मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए। जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाएदा। जा तिस पावे सतगुरु मिलाए, जा तिस पावे ता मन वसाए। अपने पाने सद

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

मारू महला तीजा आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी आपे खाप उठाप निवाजी आपे न्याऊ करे सब साचा साचे साथ मिलाएंदा काया कोट है आकारा।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाएदा, जब तब संयम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएदा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएदा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएदा, इक माया मोह गर्भ व्यापे, हमें होए रहे हैं आपे, जमकाले की खबर ना पाई, अंत गए

अच नाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता सुदनो सेवे से तुझे समावे तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई जी जंत तेरी शरणाई ज्यों तुद पावे तिवे चलावे तू आपे मार्ग पाएंदा।

मत दिहे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा आन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंध ना केते मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पो पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच

ही सुख पाएगा। लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुरु भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्ता विचवासा, बिस्ता विच फिर पाएगा। कर्म हो वह गुरु भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यों पावे तिवें चलाएगा। सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएगा। सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठापे वेखे, गुरमुख आप बुझाएगा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन कीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएगा। आप निराल मोहर तंदे।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे स्यों चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वापारा, कूर बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

को पाएगा। सतगुर सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुर ते बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया, मथे काले महल न पावे, दुखी वित दुख पाएगा। सतगुर सेवे सेवड़ पागी।

अंतर साज परम सुखाए सत सच्चे का आपे दाता जिस देवे सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले रहे जो तिल कानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर प्रदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

रसना नाम से आए रस पी जाए, रस ही ते रस पाएगा, महल अंदर महल को पाए, गुर कह सब सच चित लाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नामे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवड पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रब करे विचारा, सच्चा न्याय सचो वापारा, निचलवा सा पाएंदा अंतर कर बंके खान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चा

सत्संगत बह गुण गाएदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चौ कुंडी सुनिए साचे नाम समाएदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदरी नदर मिलाएदा वड्डे पाग एवो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया दिन शब्द है सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएदा एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला सिर हाथ न आवे पद किसे पछताएदा गुर के शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसै सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाएदा होमे गणत गुर शब्द निवारे हर जियो हृदय रखो उड़धारे गुर के शब्द सदा साला है मिल साचे सुख पाएगा सोचे ते जिस आप चिताए गुर के शब्द वसै मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाएदा जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर के शब्दे आप

शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुख फूले मोए बिल्लाए, जिनको नजर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त संभाले, हर का नाम त्याय दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

अंतर इस बाणी ते हर नाम पाएगा। वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएगा। गुरमुख एक स्यो लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएगा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएगा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जान दे बिलम न लाएगा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएगा। मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरे ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला हे सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, सब दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सकै तिसनो, गुर शब्दी मेल आया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, आन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए,

अंत न पारा, कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चित लाया हऊ मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे गुर के शब्द मरे मन मारे हो मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द

पंचदूत वस आया, बाज गुरु है मो गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर सब

सब आसा मन सा पूरे थारी, जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी है, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे तिसकी पत राखे।

हर हर नाम जिन ही सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई है, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मैं थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय है, मात गर्भ में जिन प्रतपालिया, सास गिरास होए संग समालिया, सदा सदा जपिय सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्या

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थान थनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसे त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पै इकत्रा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसें दिन।

पीतर जित उतरे पूख प्यासा है सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद।

तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

बिन सतगुर पच मुए साकत निगुरे गल जम फासा है। मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया,

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीव अमर पया अविनाशी थी वै ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जा।

सतगुर पेट हर जस मुख पणिए कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है अगम अगोचर गुरु दिखाया पूला मार्ग सतगुर पाया गुर सेवक को बिघन न पगती हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है गुर दृष्टाया सबनी ठाई जल थल पूर रहा गोसाई ऊंच ऊन सब एक समाना मन लागा सहत्याना है गुर मिले सब तृष्ण बुझाई गुर मिले ने जो है माई सत संतोख दिया गुरपुर है नाम अमृत पी पाना है गुर की बाणी सब माए समाणी आप सुनी तैं आप वखाणी जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे तिन पाया ने चल थाना है सतगुर की महिमा सतगुर जाने जो किछ करे

आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्त है आप निरारा। वरन जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए।

तिथे हर त्याय सारंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमा था, क्यों मिलिए प्रभ वे परवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक त्रिपत अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होवन हारा ऊंचा अगम अथा।